एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। भक्ति यदि केवल मंदिर जाने तक या कुछ समय की पूजा तक सीमित रहे तो उसका प्रभाव उतना ही सीमित रह जाता है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब वह हमारा स्वभाव बन जाती है। घर में, कार्यस्थल पर, परिवार के बीच और समाज में, हर जगह यदि हमारे व्यवहार में विनम्रता, वाणी में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी दिखाई दे, तभी भक्ति जीवंत होती है। प्रतिदिन कुछ पल प्रभु का स्मरण, उनका नाम और उनके प्रति कृतज्ञता जीवन को भीतर से बदल देती है। भक्ति जीवन का अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग बन जाए तो मन को शांति, विचारों को दिशा और कर्मों को पवित्रता स्वयं मिलने लगती है। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की। लीजिए सुनिए ये शिव भजन, जिसमें हम शिव का गुणगान, शिव का ध्यान करेंगे।
2: ओम से शिव को याद करो, नमः से शिव का ध्यान धरो, शिवा

प्रभु का सुमिरन केवल होंठों का जप नहीं बल्कि मन की शुद्धि का मार्ग भी है। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब कठिन से कठिन राह भी सरल लगने लगती है। जहां प्रभु का स्मरण है वहां भय नहीं केवल और केवल विश्वास का आभास होता है।

माँ आदिशक्ति की आराधना केवल सुख मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि मन में धैर्य, साहस और सकारात्मकता जगाने का मार्ग भी है, जहाँ माँ की

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और ये थी कार्यक्रम वंदना की अंतिम भक्ति प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:40 हुए हैं सुबह के। आप सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 132।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, 7:10 पर आप रोजाना सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आज फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 9:00 से 10:00 तक आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का, और इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। गीतों का कारवां फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर सुने जा सकते हैं प्रादेशिक समाचार। 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीत कार्यक्रम होगा महक पंजाब दी। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम श्रोता सुना करते हैं रोजाना दोपहर 12:00। 12:30 पर बहनें अपना कार्यक्रम सुनो सखी सुनेंगी। दोपहर 1:00 समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जिन्हें रिले किया जाएगा। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। ये कार्यक्रम आप शाम 5:00 तक सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के बीच में दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। इसके तुरंत बाद आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे। युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे शाम 5:30 पर। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई उड़ान। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सांझ सुनिएगा शाम 6:05 पर। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजां गराइंदिया के प्रसारण का। 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8 बजे आनंद लीजिएगा विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। देशगान रात 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 9:30 पर आज आप सुनेंगे हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर होंगे रात 10 बजे। 10 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं और कुछ चुनिंदा फिल्में इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे और श्रोता फोन कॉल के माध्यम से अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। 01892243 91 0892243 91 ये फोन नंबर रहेगा इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और सभा के अंत में समाचार सुने जा सकते हैं। रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर

0: देशस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बंधनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अंतरराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्ण सोपान भविष्य। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्तराज्य भ्रमण से सप्ते अनतर ग्रीस देश से एथेन्स नगरे व्यापार निवेश सामरिक आर्थिक सहकार सुदृढ़ीकर्त भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल से उच्चस्तरीय सम्मेलन से नेतृत्व कुरते वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय

0: व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The News, read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Naveen Chandram Gulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi will inaugurate 2 major solar power parks in Madhya Pradesh's Neemaj and Shajapur today. Mr. Joshi, along with Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav, will launch a 500 megawatt solar park in Neemaj and a 450 megawatt solar park in Shajapur. State New and Renewable Energy Minister Rakesh Shukla will also be present at the event. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. It added that the program will provide

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं एक अच्छी शुरुआत आधा सफर आसान कर देती है। जी हाँ, आपका आज के दिन का और आने वाले हर दिन का सफर आसान करने इसी सोच के साथ लेकर आ गए हैं हम आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम आज आप सुनेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सुविचार के साथ। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जी हाँ श्रोताओं, बहुत छोटा सा ये सुविचार है और बहुत गहरा इसका अर्थ है। जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही हमारे सुख और दुख का आधार बनता है। यदि हम हर परिस्थिति को सीख, अनुभव और अवसर की तरह स्वीकार करें तो जीवन आनंदमय लगता है। लेकिन यदि हर छोटी बात को समस्या मानकर हम चिंता करते रहेंगे तो खुशियां भी फीकी पड़ जाएंगी। इसीलिए सकारात्मक सोच, धैर्य और मुस्कान के साथ जीवन की यात्रा का आनंद लेना ही सच्ची समझदारी है। और कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब इस सुविचार के बाद एक प्यारा सा गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

इस गीत के बाद कार्यक्रम सुबह सुहानी में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, चलिए अब वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यानी 29 जून के दिन इतिहास ने कौन कौन से यादगार पल दर्ज किए और किन खास हस्तियों के जन्म और निधन आज के दिन हुए। बात सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज ही के दिन साल 1928 में भारत की ऐतिहासिक ओलंपिक हॉकी टीम का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ था, जिसने साल 1928 समर ओलंपिक्स में देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस जीत के साथ भारत के ओलंपिक हॉकी स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई, जो लगातार 6 ओलंपिक तक कायम रही। साल 2003 में भारत की स्टार खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्तर पर भारत का नाम आज के दिन रोशन किया था। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन यानी 29 जून के दिन साल 2007 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए थे। बेलफास्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी और वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के उस समय पहले बल्लेबाज बने थे। और साल 2007 में भारत सरकार ने महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। जन जन खास हस्तियों की उनकी बात करें श्रोताओं, तो हिंदी के तिलिस्मी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री का जन्म साल 1861 में हुआ। इन्होंने चंद्रकांता जैसे उपन्यास की रचना की। आंकड़ों के जादूगर, महान सांख्यिकीविद और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, 29 जून साल 1893 को इनका जन्म हुआ। बात करें साल 1975 की, तो इस साल में आज ही के दिन जन्म हुआ भारतीय अभिनेत्री उपासना सिंह का, जो हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी फिल्मों में काम के लिए जानी जाती हैं। ये साल 1997 में आई फिल्म जुदाई में एक मूक बधिर भूमिका के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुआ का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली। श्रोताओं, जिन खास हस्तियों की आज पुण्यतिथि है उनमें आधुनिक बांग्ला साहित्य के अग्रणी कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त हैं, जिन्होंने भारतीय साहित्य को नई दिशा दी। साल 1873 में इनका निधन हुआ। साल 1961 में निधन हुआ भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी।

राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री रहे सरदार बलदेव सिंह का और भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार केजी सुब्रमण्यम साल 2016 में इनका निधन हुआ। श्रोताओ, ये तो बात थी इतिहास की, और इतिहास की यही खूबसूरती है कि वे बीते कल की बातें सुनाकर आने वाले कल के लिए प्रेरणा दे जाता है। और कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक गीत श्रोताओं को और सुनवाते हैं। आनंद लीजिए इस गीत का।

फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज संत कबीर जयंती और ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन संयोग है। संत कबीर भारतीय संत परंपरा के ऐसे महान संत कवि थे जिन्होंने अपने दोहों और वाणी के माध्यम से प्रेम, सत्य, समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, आडंबर और भेदभाव का विरोध करते हुए सच्ची भक्ति को जीवन का आधार बताया। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन दान, सेवा, तप, पुण्य और आत्मचिंतन के लिए विशेष माना जाता है। यह पावन अवसर हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अच्छे विचार, विनम्र व्यवहार और मानव सेवा को अपनाने की प्रेरणा देता है। यही संत कबीर की सच्ची शिक्षा का सार भी है। कार्यक्रम सुबह सुहानी में श्रोताओं, अब बात करते हैं कार्यक्रम में जानकारियों की आगे। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी देश के पास अपने लोगों,

यदि शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़े सही आंकड़े ना हों तो योजनाएं कैसे बनेंगी, विकास की दिशा कैसे तय होगी। यही वजह है कि सांख्यिकी हर देश की ताकत मानी जाती है, सांख्यिकी यानी आंकड़ों का विज्ञान। तो आइए जानते हैं एक ऐसे दिन के बारे में जो संख्याओं की इसी ताकत को सलाम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 29 जून को महान भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि सटीक आंकड़े देश की योजनाओं, आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की मजबूत नींव होते हैं। ये दिवस डेटा के सही संग्रह, विश्लेषण और उपयोग के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश भी देता है। आगे बात करते हैं श्रोताओं, अगर धरती का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा रंगों, हरियाली, बारिश और जैव विविधता से भरपूर है तो वह है उष्णकटिबंध। यही क्षेत्र हमारी जलवायु और जीवन के संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर वर्ष आज के दिन यानी 29 जून के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई साल 2017 में। इस दिवस का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता, पर्यावरण, जलवायु, विकास और वहां की चुनौतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है ताकि इनके संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहन मिल सके। जानकारियों को कुछ समय के लिए विराम लगाते हैं और अब श्रोताओं का मनोरंजन करवाते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन एक कैमरा उसे एक तस्वीर के में हमेशा के लिए थाम लेता है। इसी वजह से या यही वजह है कि तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि भावनाएं, यादें और कहानियां भी सहेजती हैं। इन्हें अनमोल पलों और फोटोग्राफी की कला का उत्सव मनाने के लिए आज का ये दिन घोषित किया गया है राष्ट्रीय कैमरा दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत अमेरिका में जागरूकता अभियानों के रूप में हुई और धीरे धीरे ये दुनिया के कई देशों के लिए लोकप्रिय हो गया। इस दिवस का उद्देश्य कैमरे के विकास, फोटोग्राफरों के योगदान और यादों को संजोने की कला का सम्मान करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक तस्वीर कभी कभी हजार शब्दों से भी अधिक असर छोड़ जाती है। बचपन की सबसे प्यारी यादों में अगर बारिश, मिट्टी और बेफिक्र होकर खेलना शामिल है तो समझिए मुस्कान अपने आप चेहरे पर लौट आती है। प्रकृति के साथ यही रिश्ता बच्चों के विकास की सबसे खूबसूरत नींव बनता है। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय मड यानी कीचड़ या मिट्टी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के प्रारंभिक बाल शिक्षा से जुड़े संस्थानों की संयुक्त पहल के साथ। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, खुले वातावरण में खेलने के लिए प्रेरित करना, यह संदेश देना है कि मिट्टी के बीच खेलना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और स्वस्थ विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

श्रोताओं, सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। हर नई सुबह अपने साथ कई उम्मीदें लेकर आती है और कई नई खबरें लेकर आती है, तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की उन अहम हलचलों के बारे में जिन पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। हम सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री सेशेल्स की यात्रा पर हैं और इस यात्रा पर उन्होंने सेशेल्स के नेशनल असेंबली को संबोधित किया और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजोन से सम्मानित किया गया। भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 19 समझौतों की भी घोषणा की गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने कराची हमले में भारत का हाथ होने के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया है और उन्हें अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की भी कड़ी चेतावनी दी है। बंगाल की विधानसभा में आज यूसीसी और योगी मॉडल पर चर्चा सहित 5 नए विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है, जिनको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।

श्रोताओ, सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब बात करते हैं खेल खबरों की। महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दूसरी

टी20 मुकाबले में एक रन से करीबी हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ आयरलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी दो मैचों की ये श्रृंखला जो है टी20 मैचों की ये 2-0 से जीत ली है। इंग्लैंड के कप्तान और ऑलराउंडर प्लेयर बेन स्टोक्स ने अपनी टेस्ट पारी के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप अब नॉकआउट चरण में पहुंच गया है, जहां 32 टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी। आज के प्रमुख मैचों में साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच कड़ी टक्कर के अलावा ब्राजील और जापान का मुकाबला शामिल है।

श्रोताओं, बात करें अब मौसम की, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और ये उत्तर पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और आंधी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धर्मशाला के आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश का मौसम है। कहीं बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक के बारिश हो रही है और कहीं मौसम अभी साफ है, कहीं गर्ज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान आमतौर पर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

0: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी, और कार्यक्रम आपने सुना अपनी दोस्त नीलम के साथ।
1: सुबह सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:40 हुए हैं। आप सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

कार्यक्रम शोप्याग सुनने वाले साढ़े जितने भी श्रोता सबना जो साड़ा नमस्कार ते सबना दा कार्यक्रम च स्वागत है। श्रोताओं लोक गीतां दा एक कार्यक्रम है कने लोक गीतां कन्ने ही शुरुआत कार्यक्रम दी करनी है तो सुना कार्यक्रम दा ए पहला लोक गीत।

0: जी धरती असा स्वर्ग बनानी मिली करी सबना सजियो तो पहले ही बतेरी है लेकिन असा भी सबना का फर्ज बनता कि धरती जो साड़ा पर्यावरण जड़ा है तिस जो असा नुकसान ना पहुंचान कने अपने सबना की भागीदारी हुए कने पर्यावरण साड़ी धरती साफ सुथरी रहें कने हमेशा शैल कने निखरी हो रहें कने असा इस रहने वाले जो लोग हैं सह भी स्वस्थ रहने जे पर्यावरण स्वस्थ होगा। कार्यक्रम च बदना है अगे कने एक छोटा जहा ब्रेक लेना है जिसके बाद अगला लोग गीत सुनाना है।
1: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: लोग गीता दा कार्यक्रम सुप्याग तुसा सुना करदे न आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते। कने आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र तुसा कार्यक्रम जालू सुनदे ते छै छै लोग गीत असां तुहाडे वास्ते लेके आउंदे। कने लोग गीत जिहड़े हुंदे से साड़ी पहाड़ी संस्कृति पर आधारित हुंदे। कने इन्हां लोक गीतां च बंजारे दी कने बंगा दी बड़ी वरी गल हुंदी है। कने जालू गलिया च बंजारू आउंदा है तिसियों हक ना पान, आवाज ना पान, तां गल नहीं बनदी है।

अशोक कुमार दा गाया ये लोकगीत तुसा सुनिया कने इस लोकगीत ते पहले जड़ा लोकगीत तुसा सुनिया तिसियो आवाज दित्यो थी दीपक कुमार ने। कार्यक्रम शुभ प्याग सुना करदे हन तुसा आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते अगला लोकगीत सुनाना है तुहानू इस छोटे दे ब्रेक दे बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: कार्यक्रम शुभप्रयाग च अगला लोकगीत तुसां सुना। इस लोकगीत जो गाया है पूनम कने सपना कुमारी ने।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:55 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।
1: आप मिट्टी दिखे।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हारमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही

0: कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गयी। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में

0: देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
1: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंध के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देश बंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और

पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया।

यह आवाज सुखविंदर सिंह की चलते चलते फिल्म का ये गीत है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, आदेश श्रीवास्तव के संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। दिल चाहता है फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत है, आवाज सोनू निगम की।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात।

0: इसमें आपको सुनवा रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 विषय पर श्रीमती शीतल शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से गिरेंद्र सी ठाकुर की भेंट वार्ता। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा है।
1: कानून की बात के आज के अंक में सभी श्रोताओं को मेरा यानी गिरेंद्र सिंह ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम कानून की अनेक विधाओं के बारे में बात करते हैं, तो आज हम ऐसी ही एक कानून विधा के बारे में बात करेंगे जिसका विषय है किशोर न्याय अधिनियम 2015। और इस विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आकाशवाणी के स्टूडियोज में मौजूद हैं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शीतल शर्मा। तो शीतल जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस प्रकार का अधिनियम है और इसका मुख्य उद्देश्य एवं मूल भावना किस प्रकार की है, क्या है?
2: किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है।
1: जी,
2: इसकी मूल भावना यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के उन सभी व्यक्तियों पर यह लागू होती है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है या जो कानून का उल्लंघन करते हैं।
1: जी, तो इस अधिनियम के अनुसार जो है कानून से संघर्षरत बालक किसे कहा जाता है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे?
2: अधिनियम के अनुसार जो कानून से संघर्षित बालक है उसको हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी कहते हैं। उसका अर्थ है उस बच्चे से जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया हो या जिसपे किसी अपराध करने का आरोप हो, लेकिन इसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक शामिल है।
1: जी, तो मैम अब प्रश्न उठता है कि व्यस्क अपराधियों की तुलना में जो है किशोरों के मामले की सुनवाई की प्रक्रिया जो है किस प्रकार भिन्न रहती है?
2: देखिए, जब हम व्यस्क की बात करते हैं तो उनको जब अरेस्ट करते हैं तो उनके राइट्स डिफरेंट होते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जो किशोरों के मामले होते हैं उसमें जो सुनवाई होती है वो एक विशेष प्राधिकरण करता है जिसको हम किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यस्कों के विपरीत किशोरों को जो पुलिस है वो लॉकअप या जेल में नहीं रख सकती है और प्रक्रिया पुनर्वास उन्मुख होती है, यानी कि उनकी जो प्रोसेस होती है वो रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें किशोर की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर विचार किया जाता है। बोर्ड विचार करता है इसमें और उन्हें या तो माता पिता के संरक्षण की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है ना कि नियमित जेल में रखा जाता है।
1: जी, इस अधिनियम में जो है किन किन मूलभूत सिद्धांतों को विशेष महत्ता दी गई है?
2: इस अधिनियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित यानी कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, उनकी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनसे गैर भेदभाव यानी कि इक्वालिटी के साथ और अन्य बाल केंद्रित सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। इसमें जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्प्शन,

0: ऑफ इनोसेंस जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब है कि जब तक आपने आपको गिल्टी नहीं ठहरा दिया जाता है, तब तक हम लोग मानते हैं कि आपने किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है, पहले इनका प्रिंसिपल है। दूसरा होता है कि उनकी डिग्निटी और वर्थ को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन है, उनका बेस्ट इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया जाता है, उनको पॉजिटिव मेजर के बारे में ध्यान दिया जाता है।
1: जी, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसमें जो है बच्चे की जो है वैचारिक क्षमता, उसी प्रकार की उसकी भावनाएं आहत ना हो,
0: सर्वोत्तम हित और उसकी गरिमा को ध्यान में रख,
1: तो इन बातों पर जो है गौर किया जाता है ताकि जो है आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक
0: अच्छा
1: बने।
0: नागरिक बनाया जाए।
1: जी, तो शीतल जी, यदि किसी नाबालिग पर अपराध का आरोप लगता है तो प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है?
0: प्रारंभिक प्रक्रिया में किशोर को पकड़ने पर उसे 24 घंटे के भीतर किशोर को न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है। पुलिस उन्हें हवालात में नहीं रख सकती है। मामले की गंभीरता के आधार पर
1: जी
0: बोर्ड उन्हें जमानत पर छोड़ सकता है या एक परिवीक्षा अधिकारी, जिसको प्रोबेशन ऑफिसर भी कहते हैं, कि देखरेख में रख सकता है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। मतलब उनको किसी भी हालात में, किसी भी हवालात में नहीं रखा जाता है।
1: जी तो शीतल जी, जैसे महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक बोर्ड एवं संस्थाएं बनी होती हैं, तो क्या किशोरों के उत्थान हेतु भी कोई इस प्रकार का बोर्ड बना होता है? यदि हाँ, तो किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका क्या है और किस प्रकार की रहती है?
0: किशोर न्याय बोर्ड, जिसको कि हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं,
1: जी
0: कानून से संघर्षित बच्चे, जिनको हम कहते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, से संबंधित मामलों को संभालने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है। बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करता है और बच्चे के संबंध में उचित आदेश पारित करता है।
1: जी आपने मैम एक शब्द का उपयोग किया, संघर्षरत बालक। तो क्या कानून में संघर्षरत बालक को निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है? यदि हाँ, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो है अधिकार इसका है और इसको पूरा किया जाए?
0: जी हाँ, कानून से संघर्षित बच्चे यानी कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो भी होते हैं, उनको निशुल्क विधिक सहायता का हकदार बनाया गया है। उनको विधिक सहायता जो है वो कानून सहायता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको कहते हैं, मिलती है। विशेषकर यदि वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के मानदंडों को पूरा करता है।
1: जी
0: फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये सुरक्षित करने में मदद करते हैं कि बच्चों को कानूनी सहायता दी जाए।
1: जैसा आपने मैम बताया कि किशोरों को जो है पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो ऐसे में जो है उनको कहाँ रखा जाता है? कोई बाल सुधार गृह में रख सकते हैं या कोई और सुधार गृह होता है?
0: किसी भी किशोर या बालक को उनको पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, ना ही उसे जेल भेजा जा सकता है। उन्हें किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, वो उनके समक्ष जब उनको भेजा जाता है, लेकर जाते हैं, तो वो उनको एक सुरक्षित स्थान जैसे पर्यवेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है।
1: शीतल जी, पूछताछ के दौरान जो है बालक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रावधान है?
0: बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है कि एक तो उन्हें जेल या लॉकअप में ना रखा जाए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें कानून सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी, तो शीतल जी, 16 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के संबंध में अधिनियम में क्या कुछ विशेष प्रावधान है? इसमें कोई विशेष छूट दी जाती है?
0: विशेष छूट तो नहीं दी जाती उनको।
1: जी
0: जो अधिनियम में क्या है, क्योंकि ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो इसमें कवर होते हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है। अब
1: जी
0: जो जघन्य अपराध, जिनको आप हीनियस क्राइम कहते हैं, इस समय ये विचार हो रहा है कि 16 से जो 18 वर्ष के जो बच्चे की एज है, उस समय जो अपराध हो रहे हैं उनसे, वो बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि 16 से 18 वर्ष की एक कैटेगरी एक बना दी गई है इसी एक्ट के अंदर, जिसमें उनके ऊपर वयस्कों मतलब कि अडल्ट के समान कदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, और ये अनुमति जो है वो बोर्ड देता है, जुवेनाइल
1: जी
0: जस्टिस बोर्ड देता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं 16 से 18 साल के जो केसेस, जिसमें कि बच्चों ने कोई जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम किया होता है, तो वो न्याय बोर्ड एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है।
1: जी तो मैम, ऐसे मामलों में यह तय करने के लिए किन किन पहलुओं पर विचार किया जाता है कि बालक परीक्षण वयस्क के रूप में होगा या नहीं?
0: ये तय करने के लिए एक तो पहले बच्चे का परीक्षण होता है यानी कि उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है। इसमें उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक

0: शारीरिक क्षमता, फिर उसके अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता, और फिर उन परिस्थितियों का प्रारंभिक मूल्यांकन करना होता है कि जिनमें उसने उस तरह का अपराध किया था।
1: तो शीतल जी, प्रारंभिक आकलन यानी प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है कौन करता है बता?
0: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है।
1: तो मैम, क्या इस प्रावधान को लेकर न्यायपालिका या समाज में कोई कानूनी या नैतिक बहस या भिन्नता है?
0: हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या है, 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने के प्रावधान को लेकर इस समय न्यायपालिका और समाज में कानूनी और नैतिक बहस चल रही है।
1: जी
0: कानून में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हमारे इस कानून में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें पनिशमेंट नहीं है। तो इसमें अगर बच्चे को अपराध सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसको 3 साल के लिए करेक्शन होम में रखा जाता है। तो अब जो जैसे हमारे जो लीगल लोग हैं वो कहते हैं कि
1: जी
0: सजा होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, प्राथमिकी जो हम करते हैं, तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट में बच्चे की मानसिक स्थिति और उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में असेसमेंट होती है। अब
1: जी
0: ये किसी किसी केस में होती है। अब जब हम बच्चे की क्षमता देखते हैं, मानसिक क्षमता देखते हैं, यानी कि उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो जो सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटी, वो ये कहती है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसका इस तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हो सकता है।
1: जी
0: और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब कुछ बच्चों को तो 16 से 18 वाले बच्चों को तो हम भेज देते हैं उसमें चिल्ड्रन कोर्ट में उनकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके, और कुछ बच्चों को हम फिर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही ट्राई करते हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों अभी इसमें थोड़ी सी बहस चल रही है कि
1: जी
0: इसको
1: यानी
0: किस
1: कि
0: तरह
1: इसमें जो
0: से
1: एक
0: करना
1: मत नहीं
0: चाहिए।
1: है कहीं ना
0: एक
1: कहीं।
0: मत नहीं है अभी
1: जी,
0: इसमें।
1: कानून से संघर्षरत बालकों के पुनर्वास के लिए कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं? क्योंकि जब कोई तरह के कृत्य करता है तो उसमें जो है समाज जो है उसका कहीं ना कहीं दूरी बनाता है, तो या कहीं ना कहीं तो बहिष्कार करता है, तो ऐसे में जो है उनके लिए जो है किस प्रकार के जो है सुविधाएं दी जाती है?
0: इस एक्ट को कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस, फिर ब्रैकेट में केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है ये, ठीक है।
1: जी
0: इसमें हम बच्चों की केयर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमने किसी तरह का उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं, किसी तरह से उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। अब पुनर्वास के उपायों में संस्थागत सेवाएं हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जैसे पर्यवेक्षण होम, ऑब्जर्वेशन होम और विशेष गृह स्पेशल होम, और गैर संस्थान यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सेवाएं जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण और पालन पोषण शामिल है। इसमें शिक्षा, परामर्श, व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
1: जी, तो मैम, जो हमारे पर्यवेक्षण गृह या जो है स्पेशल होम है, विशेष गृह है, उनकी क्या भूमिका रहती है पुनर्वास में?
0: जो पर्यवेक्षण गृह है उन किशोरों को अस्थायी रूप से समायोजित यानी कि वेल एडजस्ट करने के लिए, जो कानून के साथ संघर्ष में है और जिनके मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहे हैं।
1: जी
0: विशेष गृह में क्या होता है, वो बच्चों को सुरक्षात्मक सेवाएं जैसे शिक्षा, परामर्श और कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, ताकि वे समाज में फिर से एकीकृत हो सके, मतलब समाज में वापस जाके अपना वही काम कर
1: यानी कि
0: सके,
1: समाज का जो है एक अभिन्न बन
0: हिस्सा बन
1: सके।
0: सके। हाँ
1: जी,
0: जी
1: तो शीतल जी, काउंसलिंग यानी परामर्श और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? किस प्रकार इनकी काउंसलिंग की जाती है? किस प्रकार से परामर्श दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है?
0: ये जो बच्चे होते हैं इनको क्योंकि केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो परामर्श यानी कि काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चों को जिम्मेदारी स्वीकार करना, अपराध के मूल कारणों को समझने और भविष्य में अपराध ना करने की मदद करते हैं।
1: शीतल जी, आपके अनुभव में किन सामाजिक कारणों से बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं? क्योंकि आपने भी इतनी लंबे समय से कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार के जो है इसमें जो है सामाजिक कारण रहते हैं।
0: सामाजिक कारणों में एक तो नगरीकरण जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है,
1: जी
0: और औद्योगिकरण के कारण परिवारों का बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल हो जाना होता है और वो खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति में शामिल हो जाते हैं। यानी कि आपके जो परिवार का एक कंट्रोल है वो हमारे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है जब से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हुई है। फिर दूसरा कारण इसमें मैं समझती हूँ ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो गरीबी और कम शिक्षा है उसकी वजह से भी कुछ बच्चे इस तरह से जुवेनाइल उसमें चले जाते हैं।
1: जी, अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे कि समाज के लिए

0: आपका क्या संदेश है, विशेषकर उन बच्चों के संदर्भ में जो कानून से संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं, कहीं न कहीं इस किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत?
1: समाज को इन बच्चों को अपराधी की बजाय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में देखना चाहिए। सभी हितधारकों को उनके पुनर्वास और समाज में पुनः वापस एकीकरण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और सहानुभूति सिंपथी प्रदान करनी चाहिए।
0: जी, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समाज को जो है ऐसे जो किशोर हैं जो अपने राह से भटक गए थे उनको जो है सही मुकाम पर लाने के लिए, समाज का अंग बनाने के लिए जो है समाज, माता पिता और समाज के सभी वर्गों को जो है सहयोग देना होगा। तो शीतल जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप किशोर न्याय अधिनियम 2015 विषय पर श्रीमती शीतल शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से गिरेंद्र सिंह ठाकुर की भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

हर सुर में एक कहानी है, हर गीत में एक बात। यादों के इस कारवां में आइए, थाम ली संगीत का हाथ। महफिल सजी है प्यार की, जहां सुरों की हर पल है बात। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, शुरू हो रही है गीतांजलि। ये कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ। तो हर रोज की मुलाकात की अपनी एक अलग बात होती है, लेकिन हर रोज की इस मुलाकात में एक चीज जो है वो कॉमन होती है, वो है आपका यानी हमारे प्यारे प्यारे से श्रोताओं का साथ। यही साथ हमारी आवाज को मायने देता है, हमारी हर प्रस्तुति को नई ऊर्जा देता है। आइए इस खूबसूरत से सफर को आगे बढ़ाएं और अपने इस प्यारे से रिश्ते को यूं ही हमारे साथ बनाए रखें, यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। क्योंकि हमारे श्रोताओं से अच्छा तो ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा।

जी यकीन मानिए, दुनिया में हमारे श्रोताओं सा कोई भी नहीं है। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। बातें कम नहीं करेंगे, खूब सारी बातें हैं, साथ ही साथ खूब सारा गीत संगीत भी आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम में। अब आगे बढ़िए, सुर से सुर मिलाइए, ताल से ताल मिलाइए, और इस गीत के साथ हो जाइए।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। जिस तरह ये कार्यक्रम है हमारे श्रोताओं के नाम, अगला गीत भी ठीक हमारे श्रोताओं के लिए उनके रेडियो सेट्स पर

0: भू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
0: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें अधिकार जाने।
0: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वेराइटी टाइडमैन पहुँची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई किया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपए तक बिका है। शिमला जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
3: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपति, पलम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागु में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
2: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि पदेन पार्षद होने के नाते धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को शपथ ग्रहण

0: समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष बुटेल, जो नगर निगम के पदेन पार्षद हैं, को भी शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। देश भर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल संपन्न हो गया। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी बड़ी बहन मां दुर्गा से मिलने के बाद मूल स्थान पर लौट गईं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समापन समारोह में शिरकत की। गंज बाजार से लेकर माता के मंदिर तक लोगों ने जगह जगह पर फूलों की बारिश की और पूरा शहर माँ के जयकारों से गूंज उठा। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजिन नॉर्डन ने 5,970 मीटर ऊंची कनीमो पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट के अनुसार वह इस शिखर पर तिरंगा फहराने वाली स्पीति घाटी की पहली महिला बन गई हैं। कनामो या कनीमो पीक काजा और किब्बर गांव के पास स्थित हिमालय की एक प्रसिद्ध चोटी है। ये अपनी ऊंचाई, कठिन मौसम और कम ऑक्सीजन के कारण ट्रैकर्स के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के लिए आयुष विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट मददगार साबित हो रही है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच, उपचार और ज़रूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता से।
1: इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए विभाग की ओर से अलग बजट उपलब्ध करवाया जाता है। शिविरों के बाद मरीजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए फॉलोअप कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। ज़रूरतमंद बच्चों पर विशेष नज़र रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 जून से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना, बिलासपुर जिलों में बीती रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुक्खू बोले बड़ा बंगाल को बनाएंगे प्राकृतिक पंचायत, सड़क के लिए दिए 10 करोड़। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सुक्खू ने बड़ा बंगाल में रचा इतिहास, दुर्गम क्षेत्र में रात बिताने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तीर्थ यात्रा

0: जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, भूस्खलन का खतरा, श्रीखंड के बाद किन्नौर कैलाश यात्रा भी स्थगित। हिमाचल दस्तक की खबर है, बल्क ड्रग पार्क में 700 बीघा जमीन पर अभी तक नहीं हुई पेड़ों की गिनती। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, प्रदेश में 1 जुलाई को मानसून की दस्तक संभव, 1 से 4 तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वैरायटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए किया क्वालिफाई। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: वन जीरो 3.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत। वो श्रोता जो हमारे लिए बेहद खास हैं और हमारे दिल के पास हैं। हमारे श्रोता हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि वो हमारे साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं और हर वक्त हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। लफ्जों में तो हम समझा नहीं सकते कि हमारे श्रोता हमारे लिए कितने खास हैं। अगर श्रोता जानना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कितने खास हैं, तो इस गीत में सुने कि वो कितने खास हैं हमारे लिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी आप सुन सकते हैं हमें।

कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बात ही नहीं होती कम। श्रोताओं, म्यूजिक में टाइम मशीन जैसी ताकत होती है। एक धुन है जो हमें कभी पुराने समय में ले जाती है, जिस तरह समय अपने पुराने दौर में हमें ले जाता है। तो आइए हम भी चलते हैं उस दौर में जहां मस्ताना समा था और रंगीन नज़ारा था।

श्रोताओं, गीत बदलते हैं, जिस तरह से कार्यक्रम बदलते हैं, कभी गीत नए होते हैं, कभी पुराने, लेकिन संगीत से जो हमारा रिश्ता है वो कभी ना तो बदलता है ना तो पुराना होता है। उस रिश्ते को और खूबसूरत बनाने के लिए आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत फिल्म ढाई अक्षर प्रेम की।

फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखें बंद करें तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो अगला गीत सुनकर अगर आपके पैर थिरकने लगे तो खुद को रोकिएगा मत, बस नाच लीजिएगा, झूम लीजिएगा।

श्रोताओ, हर गीत की आखिरी पंक्ति होती है और आखिरी पंक्ति के बाद गीत खत्म होता है, थमता है, लेकिन संगीत का सफर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। आज का कार्यक्रम गीतांजलि बेशक यहीं पर संपन्न हो रहा है, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगला कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर एकता स्टूडियोज में पहुंच चुकी है। तो यूं ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ गीत संगीत के इस सुरीले सफर का आनंद आगे जारी रखने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए सभी श्रोताओं का दिल से

कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा विकास पठानिया के तकनीकी सहयोग से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब लेकर आए हैं हम आपका अपना कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित, गीतों का कारवां। कार्यक्रम में पहला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म बेशरम से।

अभी ये गीत सुना आपने अमिताभ भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था राजीव बर्नवाल ने और धुन बनाई थी ललित पंडित ने। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म पैडमैन से।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में फिल्म सुल्तान से।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म दबंग 2 से सोनू निगम और तुलसी कुमार के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था इरफान कमाल ने और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। लीजिए अब आपके रेडियो सेट पर है जुविन नोटियाल और असीस कौर के युगल स्वरों में ये गीत। फिल्म है शेरशाह।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम

0: काम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला, MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम गीतों का कारवां की आखिरी पेशकश है फिल्म यमला पगला दीवाना से, और इस गीत को गाया है लक्ष्मी अय्यर, राहुल सेठ, राहत फतेह अली खान और साथियों ने। संगीत दिया है नौमन जावेद ने और गीतकार हैं राहुल सेठ और नौमन जावेद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों का कारवा। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप आनंद लीजिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त एकता। कार्यक्रम में पहला लोकगीत आपके लिए लाए हैं जन्मा जयसिंह की आवाज़ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट 1999।

0: EMI, जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप आकाशवाणी धर्मशाला से सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं विक्रांत का गाया हुआ।

अभी ये लोगे सुना आपने अंकुश संधल के का गाया हुआ। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं कुमारी सोना और सखियों का गाया हुआ ये लोकगीत।

हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रदीप परदेसी और खोजा सैन के युगल स्वरों में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 11 बजने को कुछ ही पल बाकी हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को नगर निगम धर्मशाला तथा विधायक आशीष बुटेल को नगर निगम पालमपुर के पदेन पार्षद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपये तक बिका है। शिमला जिला के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपाती, प्लम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागु में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: देशभर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने एक दो दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के

0: प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम महक पंजाब दी।
2: दोस्तों, महक पंजाब दी लेके मैं जतिंदर हाजिर हाँ। कहते हैं जे पंजाब नू समझना है तो उसके गीत सुनो, क्योंकि इत्थे इतिहास भी गाया जाता है अते मुहब्बत भी। लो जी, पेश है आज दा पहला गीत।
3: जीवन भाई खेतों के

0: प्रोग्राम महक पंजाब दी जारी रहेगा इस अंतराल तो बाद।
1: जीवन भाई,
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग

0: MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: पंजाब दी हवा विच एक अजीब जादू है। इत्थे आउण वाला हर इंसान अपने नाल कोई ना कोई याद जरूर लेके जांदा है। आओ इसे एक होर सुरीली याद नाल मिलदे हां।

0: प्रोग्राम का आखिरी गीत इस अंतराल तो बाद।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, ऑपेश है प्रोग्राम महक पंजाबी दा आखिरी गीत।

0: जेनी झांझरा पाने का शौक है ना।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
3: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
2: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
2: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
3: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
2: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ। अच्छा।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा, अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
0: हा?
1: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा।
0: अच्छा।
1: सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
2: ये देखो, ये
0: पेड़ देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो। हाँ। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों? देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो, देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे, सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है, अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
4: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: हाँ अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
2: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
2: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। दोपहर के 12 बजे हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद। सीमा पर डटे देश के वीर प्रहरियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आप ही के साहस और सतर्कता से करोड़ों देशवासी चैन और विश्वास के साथ अपना जीवन जी पाते हैं। अगले 30 मिनट तक हम आपके साथ बने रहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लाने की और आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर करने की। और कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इस देशभक्ति गीत के साथ।

0: ये देशगान अभी आपने सुना और ये भावनाएं हर वीर सैनिक भाई बहन के मन में होती हैं, जिन्हें बोलों में ढाला गुलशन बावरा ने, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया इस देशगान के लिए, महेंद्र कपूर की और साथियों की आवाज़ें इसमें, उपकार फिल्म से ये देशगान हमने लिया था। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, जिंदगी की राहों में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जब मंजिल की तलाश में कदम रुकना नहीं चाहते। सपनों को सच करने की चाह हो तो वक्त भी कम पड़ने लगता है। कार्यक्रम में अब हम भी आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं अगला गीत जो हम सैनिक भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं उन्हें वो पसंद आएगा। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजों में जीत फिल्म का गीत है इस वक्त आपके रेडियो सेट्स पर। धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, इस गीत को लिखा समीर ने।

फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुना जा रहा है। सैनिक साथियों, कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि इंतजार उन्हें और भी गहरा बना देता है। फासले चाहे जितने भी हों, सच्ची मोहब्बत और अपनापन हमेशा दिलों को जोड़े रखते हैं, और इस बात को सैनिक भाई बहनों से ज्यादा भला कौन समझ सकता है। फासलों से रिश्तों की गर्माहट कम नहीं होती, यादों की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। इन्हीं जज्बातों को सुरों में ढालता हुआ पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

सैनिक साथियों, जिगर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर का लिखा, आनंद मिलिंद के संगीत से सजा, साधना सरगम पंकज उधास की आवाजों में। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। नफरत की आवाजें चाहे कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, मोहब्बत की एक सच्ची पुकार हमेशा दिल तक पहुंच ही जाती है। तो आइए रिश्तों में अपनापन और जिंदगी में प्यार के रंग भरता हुआ अगला गीत सुनते हैं। जान फिल्म से ये गीत है, इसे गाया है साधना सरगम उदित नारायण ने। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आनंद मिलिंद।

सुर थम सकते हैं लेकिन अपनेपन की गूंज कभी खामोश नहीं होती। आज की ये महफिल यहीं सिमटती है मगर दिल से हमेशा ये दुआ निकलेगी कि आपकी राहों में खुशियां ही खुशियां हों। इन्हीं चंद बातों के साथ सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए प्यारी सखियों के लिए कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी में सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं सखियों हम हर दिन नई नई जानकारियां और मनोरंजन, तो फटाफट से जुड़िए आप भी हमसे अपने इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के सफ़र में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी एकता। सबसे पहले आप सभी श्रोता सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप सब? जी हाँ, गर्मी का मौसम चल रहा है और आजकल तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी सखियाँ खुश हों, स्वस्थ हों और हर मौसम को हंसते मुस्कुराते हुए जो हैं गुजारें, और खुद भी खुश रहें, अपने घर परिवार को भी खुश रखें और हर तरफ खुशियाँ बिखेरती रहें। सखियों आज है कबीर जयंती। भक्त, कवि, संत, कबीर, महान संत, समाज सुधारक कबीर थे। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती जो है मनाई जाती है। सखियों कबीर जी का मानना था कि ईश्वर एक हैं, वो सृष्टि के कणकण में व्याप्त हैं। वो कहते थे कि हमें हर प्राणी से प्यार करना आना चाहिए। संत कबीर ने समाज में फैली छुआछूत, जाति पाति, अंधविश्वास और धार्मिक अडंबर का विरोध किया। वह मानते थे कि ईश्वर को हम सच्चे मन, अच्छे कर्म और भक्ति से पा सकते हैं। कबीर के दोहे और साखियां आपने भी अवश्य ही पढ़ी होंगी या कुछ सखियां पढ़ रही होंगी। सखियों इनकी जो साखियां थी उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता था। उन्हीं साखियों में से एक साखी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कबीर कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुन शीतल होए। कि हमें ऐसी वाणी बोलनी है कि जो अहंकार रहित हो। जी हाँ सखियों, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को तो सुख मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे तन को भी शीतलता प्रदान होती है। कबीर की जो साखियों की भाषा थी वो पंचमेल की खिचड़ी थी। कबीर कहते थे कि ईश्वर जो है हर जगह विद्यमान है, पर हम लोग अज्ञानवश उन्हें जगह जगह ढूंढते हैं। कबीर जयंती सखियों हमें प्रेम, सत्य, समानता और सद्भाव का संदेश देने के साथ साथ एक बेहतर समाज बनाने की भी प्रेरणा देती है। सखियों कार्यक्रम में आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों आज है सोमवार और आज के कार्यक्रम में हम आपसे बात करते हैं अपनी संस्कृति के बारे में। जी हाँ, हम हिमाचली हैं और हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। जब हम हिमाचली सखियों कहीं घूमने जाते हैं तो लोग हमारी वेशभूषा और बातचीत से ही हमें पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि क्या आप हिमाचल से हैं। जी हाँ, क्यों होता है ना कभी कभी आपके साथ भी ऐसा जब आप कहीं बाहर घूमने गए हों। जी हाँ सखियों, हम हिमाचली दिल के बहुत भोले होते हैं और हर किसी को अपने प्यार से अपना बना लेते हैं। हमारे यहाँ का खान पान, रीति रिवाज, मेले, लोक नृत्य और भी बहुत सी चीज़ें विश्व प्रसिद्ध है। आप तो जानती ही हैं सखियों, हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं और साथ ही साथ धार्मिक आस्थाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में सादगी, अतिथि सत्कार और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। हमारी संस्कृति ही सखियों हमारी पहचान है। बात करें अपने पहनावे की तो हमारी पारंपरिक वेशभूषा हिमाचली टोपी, पट्टू और शॉल हैं। हिमाचल के हस्तशिल्प में कुल्लू और किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल और लकड़ी की नकाशी भी प्रमुख हैं। सखियों हिमाचल प्रदेश के कारीगर ऊनी वस्त्र, चंबा रुमाल, धातु कला, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नकाशी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हिमाचली संस्कृति भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हम महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जीवंत रहे तो सखियों हमें अपनी लोक परंपराओं, भाषा, कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में जान सकें, इन्हें अपना सकें। भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत में अनेक ऐसी लोक कलाएं हैं जो सदियों से हमारी परंपराओं, भावनाओं और जीवन मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। सखियों इन्हीं में से एक है चंबा रुमाल। यह केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की महिलाओं की कला, धैर्य और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक माना जाता है। आपने चंबा रुमाल तो देखा ही होगा। जी हाँ, चंबा रुमाल अपनी अनूठी दोहरी कढ़ाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस कला में हमारी सखियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रतिभा और संस्कृति को जो है संजोकर रखा है। आज हम कार्यक्रम में चंबा रुमाल के बारे में ही बात करेंगे। जी हाँ सखियों, चंबा रुमाल विश्व प्रसिद्ध है और जानेंगे सबसे पहले चंबा रुमाल के इतिहास के बारे में। जी हाँ, चंबा रुमाल का इतिहास सखियों लगभग 300 साल पुराना माना जाता है। इसका विकास हिमाचल प्रदेश के चंबा रियासत में हुआ। उसमें राजघरानों की महिलाएं धार्मिक और सांस्कृतिक और पारिवारिक अवसरों पर रुमालों पर सुंदर कढ़ाई करती थी। धीरे धीरे सखियों ये कला आम महिलाओं तक पहुंची और उनके जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। राजा उमेश सिंह ने अपने शासनकाल में इस कला को विशेष संरक्षण दिया। उसमें चंबा के महलों में महिलाओं को कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती थी। चंबा रुमाल की सखियों सबसे बड़ी विशेषता इसकी दोहरी साटन सिलाई, डबल साटन स्टिच है। इस तकनीक से रुमाल को आगे और पीछे दोनों भाग समान रूप से दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर कढ़ाई सखियों इसमें की जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों के रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है और सफेद या हल्के रंग के सूती या मलमल के कपड़े पर जब सखियां रंग बिरंगे धागों से सुंदर आकृतियां बनाती हैं तो बहुत ही मनमोहक लगती हैं। महिलाओं और चंबा रुमाल के संबंध की बात करें तो चंबा रुमाल की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय जो है हम महिलाओं को ही है। महिलाएं घर के कार्यों के साथ साथ खाली वक्त में सखियों कढ़ाई करती हैं। पुराने समय में विवाह से पहले बेटियों को ये कला सिखाई जाती थी और बेटियों की शादियों में रुमाल देना जो था वो शुभ माना जाता था और धार्मिक अवसरों पर भी महिलाएं सुंदर सुंदर रुमाल तैयार करती थी। सखियों इसी विषय पर आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। कार्यक्रम में फिर से वक्त है प्यारे से गीत का, तो आइए मिलकर गुनगुनाते हैं ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम सुनो सखी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सखियों, कार्यक्रम में फिर से आप सबका स्वागत है और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं चंबा रूमाल की। सखियों, चंबा रूमाल केवल एक कला ही नहीं बल्कि सामाजिक परंपरा का भी हिस्सा है। आज भी अनेक स्वयं सहायता समूह और महिला संस्थाओं के माध्यम से ये कला नई पीढ़ी तक पहुँचाई जा रही है। सखियों, चंबा रूमाल बनाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, जी हाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कपड़े का चयन करना पड़ता है जिस पर हमने डिज़ाइन बनाना है। तो चंबा रूमाल के लिए जो हमने कपड़ा लेना है वो सफ़ेद या होगा और वो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। चंबा रूमाल पर राधा कृष्ण की रास लीला, श्री राम और सीता की आकृतियाँ, महाभारत के दृश्य, शिव पार्वती, गणेश जी की फूल पत्तियों वाली फोटो, मोर, हाथी, हिरण, घोड़े, बेल बूटे, विवाह और लोक जीवन के दृश्य जो हैं बनाए जाते हैं। सखियां अपनी पसंद के अनुसार इन दृश्यों को उस कपड़े पर जो है डिज़ाइन करती हैं, फिर सुंदर रंगों के माध्यम से जो है इसकी कढ़ाई की जाती है। पर सखियों जो है रंगों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करती हैं ताकि जो भी रंग वो चुने वो बहुत ही निखर कर सामने आए। और रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है

सखियों, रेशमी धागों से दोहरी कढ़ाई और किनारों की सुंदर सी सजावट की जाती है। एक सुंदर चंबा रुमाल तैयार करने के लिए कई दिन, कई सप्ताह और कई बार महीने भी लग जाते हैं। आज चंबा रुमाल महिलाओं के लिए स्वरोजगार का भी अच्छा माध्यम बन चुका है। अगर हम भी चाहते हैं चंबा रुमाल बनाना या ये कला सीखना, तो हम सीख सकती हैं। जी हाँ, हम स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इसका प्रशिक्षण जो है ले सकती हैं। सखियों, ये ट्रेनिंग लेकर हम घर बैठे अपने लिए रोजगार के अवसर तैयार कर सकती हैं। इससे हम महिलाओं की आर्थिकी जो है मजबूत होती है और हम आत्मनिर्भर बनती हैं। जी सखियों, जब हम आत्मनिर्भर बनती हैं तो एक अलग ही जोश हम में दिखता है। सखियों, चंबा रुमाल का सांस्कृतिक महत्व भी है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की पहचान है। भारतीय लोक कला, पारंपरिक चित्रकला और हस्तकला का सुंदर संगम है। सखियों, इसमें धर्म, संस्कृति, लोक जीवन और प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। चंबा रुमाल को देश विदेश में भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका जो भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग है, वो भी इसे मिल चुका है। इससे इसकी विशिष्ट पहचान और संरक्षण जो है सुनिश्चित हुआ है। देश विदेश के संग्रहालयों और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में चंबा रुमाल को विशेष स्थान दिया जाता है। सखियों, अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये काफ़ी कीमती होते हैं। वर्तमान वक्त में इसके संरक्षण की बात करें तो सरकार, हस्तशिल्प संस्थाएं और स्वयं सेवी संगठन इस कला के संरक्षण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। तो हम युवाओं को भी आगे आकर अपनी परंपराओं को, अपने धरोहरों को जो है बचाना है, ताकि हमारी ये कलाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहें। चंबा रुमाल महिलाओं के लिए संदेश देता है कि पारंपरिक कला केवल सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी साधन है। यदि महिलाएं अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ें तो वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। सखियों, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर हम भी चाहती हैं अपनी इस कला को एक अच्छा मंच देना, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट है ये बनाकर बेच सकती हैं। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है। ये कला प्रेम, धैर्य, सौंदर्य और परंपरा का अद्भुत संगम है। आज आवश्यकता है नई पीढ़ी, विशेषकर हम महिलाएं और युवतियों को इस कला को सीखने की, संरक्षित करने की और विश्व में इसकी पहचान को और भी मजबूत बनाने की। चंबा रुमाल केवल एक हस्तशिल्प नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य खजाना है। इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम सभी जो है इसको सहेजेंगे। और जिन सखियों को चंबा रुमाल सीखने का शौक है, वो सीख सकती हैं। कार्यक्रम में सखियों, अब देते हैं अपनी बातों को विराम और चलते चलते सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ अब अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी एकता को दें अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने। इसी के साथ प्यारी बहनों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं आप आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर

मानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दूधुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफ़र जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हों हिम्मत ना हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी एक पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से, उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक

समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज़ सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है। दिल की बातें दिल ही जाने या दिल धड़कने का सबब याद आया, जो दिल को छू कर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार, मन में है

ठाना जो अपने लिए आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज, दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास, मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं, राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें, किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना, दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे, सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए, ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराज़गी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हों, उनके मनाए जाने का इंतज़ार कर रहे हों, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज़ ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है।

जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के।

यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के।

0: बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें, ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल के वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं, उसी को यहाँ उजागर करेंगे तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत ज़रूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल

कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज़्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहाँ है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समझ जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज़ में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज़ में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज़ से मतलब ना उस चीज़ से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूँगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यहीं कर रहा है, तो झूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हुई, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाएं उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज़्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहाँ भावनाएं जुड़ी हों वहाँ दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमज़ोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहाँ प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: योग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

0: खरगे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉक्टर अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं, ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना। डारा डारा डारा। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो।

खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा। हमसे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

लड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: ने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।
4: cat cat माने बिल्ली।
5: rat rat माने चूहा।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं,

0: पर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजने हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री विमान अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का 4th चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित 1000 मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 5 वर्ष तक 65,000 रुपये और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक व डीजल यात्री बसें पात्र होंगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को अध्यक्ष और जितेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। उधर पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। सोलन में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महापौर व उपमहापौर के चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी पार्षद मौजूद नहीं थे और कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया।
4: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख

0: को 3 बजे रखा गया। सदस्यों के कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
1: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि सोलन, मंडी और धर्मशाला नगर निगम में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन राज्य सरकार महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने को लेकर हथकंडे अपना रही है। बिंदल ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। जरूरतमंद बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। ये योजना शहरों की झुग्गी बस्तियों, प्रवासी और वंचित समुदायों के बच्चों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
1: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता अर्थात सीईटीए 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह समझौता भारत की व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देना है। इससे भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई, मछुआरों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों को वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यूनाइटेड किंगडम भारतीय वस्तुओं पर लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बड़े और उच्च क्रय शक्ति वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद और कृषि प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय मसालों, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम के गूदे, आचार और दालों जैसे उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही भारत ने डेयरी, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखकर घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों के लिए भी ये समझौता नए अवसर लेकर आया है। भारत के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, खेल सामग्री, खिलौने और अन्य विनिर्माण उत्पाद अब ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की लागत कम होगी और निर्यात बढ़ने की संभावना बनेगी। इससे देश के विभिन्न औद्योगिक और हस्तशिल्प केंद्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सेवा क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत है, इस समझौते का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और शेफ जैसे पेशेवरों के लिए भी ब्रिटेन में कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे।

0: समझौते का एक उल्लेखनीय पहलू सामाजिक सुरक्षा योगदान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत से अस्थायी रूप से ब्रिटेन भेजे गए कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान की बाध्यता से राहत मिलेगी। इससे हजारों भारतीय पेशेवरों और अनेक भारतीय कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा, विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में सहायक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये वैश्विक निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करते हैं। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ सकती है और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिल सकती है। हालांकि किसी भी मुक्त व्यापार समझौते की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, समयबद्ध आपूर्ति, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही छोटे उद्यमों को भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक जानकारी, वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारत के किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और युवाओं के लिए नए वैश्विक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो ये समझौता निर्यात वृद्धि, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही ये सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा। विषय था भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद लीजिए।
3: तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
5: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहां

0: महापुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ।
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
3: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद

0: अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
1: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता, और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
1: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
1: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए?
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
1: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
3: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा, ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
4: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
1: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे, धोखाधड़ी से नहीं।
4: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
1: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
2: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
4: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार हो

0: वह तो अब सूरत ना दिखाएगा।
1: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
2: मक्कार का मुंह काला।
0: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
3: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
4: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे
3: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता

0: स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके, या फिर दिखावा होता है, या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है, या तनाव हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीज़ें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वाह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल

0: है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं तो। बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीज़ें करना लगता है उन्हें ज़रूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो और इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है। और नेहा, जब कोई इस तरह की चीज़ों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन कर रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीज़ों का हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीज़ों बुरी आदतों के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथ ही लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है, छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है,
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी,
0: बिल्कुल एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हों, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हों, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो वही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना।
1: जहाँ तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नज़रिए को देखना ज़रूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
0: क्या बात,
1: और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यही नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें मानें और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना, थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नज़रिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर पे जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहाँ रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान दो तीन दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहाँ रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो वो घबरा जाते,
1: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
1: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
0: था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझें और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है
0: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। हा? इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे। हा? और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो से आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौड़ियाँ तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीज़ें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए,
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जाँच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं।

0: घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये
1: बिल्कुल
0: गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, हम सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने

0: का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ ऐसा?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल. हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क. तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है.
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है. जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं.
0: जी
1: तो हम सिंपल टर्म्स में देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया. जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है.
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं. जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है. तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
0: जी
1: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया.
0: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
1: तो मैं तो
0: कारगर?
1: कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
0: दही?
1: दही से अच्छा कोई
0: हाँ।
1: प्रोबायोटिक नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज़ गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली.
0: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर. ये गाना
0: क्या
1: मुझे
0: बात
1: बहुत
0: है,
1: पसंद है.
0: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज ख़ास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्ने होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोलते हैं हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक,

0: गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: ओके okay.
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी, गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और
1: क्या
0: काफ़ी
1: बात है
0: सुना है हमने।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: दीजिए। हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं या हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है, अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ
1: कहा
2: तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल
1: तो,
2: बिल्कुल
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है तो?
2: हाँ, तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि

0: अल्कोहल एंड ऑन एल्कोहल पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है,
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं। लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड

0: लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
1: हाँ
0: या
1: तो
0: कुछ नहीं?
1: नहीं, खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज़्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में,
0: जी
1: कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है, आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज़ अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो
0: चले चलो, लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं?
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रही ये तेल अच्छा है, ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिंस, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिंस आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर, बिकॉज उसमें भसा

0: होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
1: और स्टेरॉइड भी
0: स्टेरॉइड्स भी आता है, और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,450 हो गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा

0: The Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And in FIFA World Cup, Brazil will take on Japan in a round of 32 clash at Houston Stadium in the US tonight at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी भजन। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति नरेंद्र चंचल व साथियों की मिलीजुली आवाजों में।

गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं विशु भटनागर का गाया ये भजन।

आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका और हमारे तमाम श्रोताओं का भी जो सुन रहे हैं आज का ये हमारा कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम है युवा मंच और कार्यक्रम में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी युवा दोस्तों का और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का भी। जी कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया, करेंगे बातें मिलकर आज कुछ भी खास। जी हाँ, नई उड़ान सपनों की हो या आसमान की बुलंदियों को छूने की, ज़रूरी है उसमें वो जुनून जो होना चाहिए, जो देता है हर सपने को नया आयाम। ज़रूरी है उसमें वो जज्बा जो रुकने नहीं देता है हमें तब तक जब तक हम उसे पा ना लें। तो कुछ ऐसा ही सफ़र रहता है हमारे सपनों की उड़ान का, जो हर दिन कुछ नया हमें सिखा कर जाता है, हर गलती के रूप में नया अनुभव कराता है, हर असफलता कभी तोड़ती है हिम्मत तो कभी जोड़ती है फिर से टूटे सपने को। यकीनन युवा दोस्तों, हौसलों की उड़ान का यह सफ़र आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, आप सब समझते हैं भली भांति, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि ये इम्तिहान होता है हमारे धैर्य का, ये परीक्षा होती है हमारे सब्र की, ये कसौटी होती है इस बात की कि हम विपरीत परिस्थितियों में बिखरते हैं या और निखरते हैं, थक कर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं या फिर दुगनी ऊर्जा से फिर से जुट जाते हैं उस अधूरे सपने को पूरा करने में। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। युवा दोस्तों, जीवन एक अनंत यात्रा है और इस यात्रा में हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने की चाह रखता है, लेकिन सपने तभी साकार होते हैं जब उनमें मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का रंग भर दिया जाए। यही संकल्प हमें नई उड़ान भरने की प्रेरणा देता है। युवा अवस्था जीवन का वह पड़ाव है जब ऊर्जा, उत्साह और नई सोच अपने चरम पर होती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो युवा न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलिए, बातें तो होती रहेगी पर मनोरंजन करना हम आपका कैसे भूल सकते हैं, तो चलिए सुनते हैं मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती। 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम युवा दोस्तों का और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का भी। जी हाँ, आज का युग युवा दोस्तों अवसरों का युग है। पहले जहाँ करियर के विकल्प सीमित थे, वहीं आज शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, पत्रकारिता, संगीत, अभिनय, डिजिटल मीडिया, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि युवा अपनी रुचि और क्षमता को पहचाने और उसी दिशा में आगे बढ़े। युवा दोस्तों, किसी भी नई शुरुआत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कई बार असफलता, आलोचना और परिस्थितियां हमें निराश कर देती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उम्मीद है हमारे युवा दोस्त भी हार नहीं मानेंगे, एक जोश के साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, शामिल करते हैं एक और प्यारा सा गीत अपने युवा दोस्तों के लिए।

जी हाँ युवा दोस्तों, आज का युग डिजिटल क्रांति के दौर में युवाओं के पास सीखने के अनगिनत साधन है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल पुस्तकालय, वेबिनार और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल विकास के लिए भी करें। युवा दोस्तों, नई उड़ान, जी हाँ, का अर्थ है यह केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। हमें पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एक जागरूक और जिम्मेदार युवा ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है, ये तो आप सब जानते ही हैं।

युवा मंच कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे तमाम श्रोताओं का और हमारे युवा दोस्तों का भी। तो युवा दोस्तों, आज हम संकल्प लें कि हम अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, निरंतर सीखते रहेंगे, सकारात्मक सोच अपनाएंगे और कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि याद रखिए, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुनील कुमार से। और अब अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इसी उम्मीद के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:00 बजकर

55 मिनट और 2 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरमई सांझ का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोजांग रहिंदियां। इसमें आज बातचीत का विषय है कार्बनिक एवं जैविक खेती। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसमें आज बातचीत का विषय है फलदार पौधों की देखभाल। साथ ही होगी भेंट वार्ता, होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा संगीतकार सचिन जिगर के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनिएगा। रात्रि 10:00 से 11:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे प्रसारित किया जाएगा। अपने पसंद का गीत सुनने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। नंबर वही है 01892224391। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। जो नए श्रोता हम संग जुड़ेंगे 01892224391 बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं हमारे द्वारा चुनिंदा किए गए फिल्मों से अपनी पसंद का गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदना सुनिएगा। 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ साथ संगम होगा मनोरंजन का भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की भी। FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश की चार नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया है। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नव निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव स्थगित किया गया। अब ये चुनाव 1 जुलाई को होगा।
1: कोरम की रिक्वायरमेंट 3/4 होती है टोटल आपके इलेक्टेड काउंसिलर, तो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में वो कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने की वजह से अब आगे इसको नियम अनुसार स्थगित किया गया है। हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
2: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए, तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपचार की बेहतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंधों को बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नव निर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और करोड़ों परिवारों को पक्का घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, बैंक खाते, नल से जल और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम

0: 7:45 पर। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ। दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तताओं के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कुछ ऐसे मधुर गीत सुनने का जो दिल को सुकून दें और यादों के खूबसूरत गलियारों में ले जाए। तो आइए सुहानी शाम को और भी खुशनुमा बनाते हैं चुनिंदा सदाबहार और लोकप्रिय फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं मजबूर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्तों, संगीत वह जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर भावना को व्यक्त कर देता है। कभी यह मुस्कुराने की वजह बनता है तो कभी बीते पलों की याद दिला जाता है। तो चलिए सुनते हैं छोटी सी बात फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल हैं योगेश के और धुन तैयार की है सलील चौधरी ने।

आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़, सुन रहे हैं अभी आप कार्यक्रम फिल्म संगीत सुरमई सांझ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
3: सुरमई सांझे कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रिनमन कोडिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि संगीत दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। यह न केवल मनोरंजन करता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा

एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ।

0: बस सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सूरज इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत दिया है शंकर।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों अज टाले भरे मंजिस होगी गुलाबो तो गुलाबो जी राम राम
1: जी। बिल्कुल जितने भी सुनने वाले स्रोत हैं तिना सभी जो मेरी तरफा ते भी राम राम कने बड़का चाचू जी। दिखा अहाँ टाले पर आए बैठे न कने अज जड़ी है जै रिम जिम बरखा जड़ी है से लगी हो ओड़ा ओड़ा है ना।
0: बिल्कुल
1: कने
0: बिल्कुल
1: दिखा हरे किसान जड़े से तिना दे चेहरे पूरी तरीके ने जड़े से खिली उठे न। कहे जे इस टाइम बरखा की बड़ी बड़ी जरूरत थी, खास करी ऐसे जड़े क्षेत्र न जिथू की बरखा दे पानी पर जड़ी से खेती बाड़ी जड़ी से निर्भर होंगी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। कने बरखा दिखा बरखा बोलते ना जालू भी हो आया किसानों के चेहरे जड़े से खिली उठते हैं। तो एक बड़ी अच्छी गल है कि अज बरखा हुआ कर दी है हाड़े इलाके जड़ा हाड़ा मध्य क्षेत्र है हाड़ा इतों बरखा हुआ कर दी है। अज कने दिखा गर्मी ते भी थोड़ी दी निजात जड़ी से मिली है ना।
0: बिल्कुल कहना है दिखा कि भी जड़ा ये बरसात का मौसम है ना, ये जड़ा बरसात का मौसम है, अगर इस बरसात के मौसम से जड़े साड़े फलदार पौधे हैं ना
1: जी बिल्कुल
0: तिना भी एक अच्छा जड़ी मतलब तुम हाँ बोलते हैं पैदावार होंगी है और अच्छी जड़ी बढ़ोतरी के भी होंगी है
1: जी
0: और पानी भी मतलब तिना जो बिल्कुल भरपूर मात्रा कहने के भी इस टाइम में मिला करता है चाहे से अहाँ छोटे पौधे लगाए ना है ना।
1: जी
0: लेकिन क्या होंगे कि कई बार जिया जे साढ़े फलदार पौधे हैं उतु कई बार जे जो खरपतवार कहने भी उन्होंने अखे बखे उगते हैं तो असं सजो हटाना चाहिए न और कई बार जोड़े कीड़े मकौड़े कहने भी लगी आते तो उसके भी जी मतलब बीमारियों की भी संभावना के भी रही है
1: बिल्कुल
0: तो सो बिल्कुल मतलब एक चेतन बनने की जरूरत है कि भाई जिया कि हाँ जो अगर कोई बीमारी वगैरह लगती या कोई कीट पतंगा वगैरह लगता तो असं सो टाइम रेंदे के भी उसकी जी देख रेख करना के भी बड़ी बड़ी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल बड़का चाचू। फलदार पौधे की अच्छी देखभाल कने उन्हां दी वृद्धि उत्पादन कने फलों की गुणवत्ता बेहतर होंदी है। ताई होंदी है जालू अहां छोटियां छोटियां गल्ला जियां कि तुहां दसियां ने है ना। कने इसे सोगी सिंचाई जड़ी ऐसा भी सारे ते मुख्य जड़ी हाँ जो सावधानी है कि सिंचाई का खास ध्यान रखना है। सिंचाई अहां कियां करनी है कि पौधे की उम्र कने मौसम के हिसाब ने है ना। अगर गर्मी का मौसम है बरखा नहीं होगा दी बड़े टाइम दे तो रोजाना जड़ी ऐसा पौधे जो सिंचाई करना जड़ा सा बड़ा जरूरी है। इस दे सोगी जियां तुहां दस्या खरपतवार जड़ा सा हटाई करी गड़ी गली सड़ी जड़ी गोबर दी खाद होंदी है तिस जो अहां जो साल च एक दो बारी जड़ा सा देना जरूरी है। कने जलू अहां पानी दिंदे पौधे जो ता मिट्टी जड़ी असै सैट होई जांदी तिस ताईं मिट्टी थोड़ी दी ढिल्ली कने हल्की जड़ी से निराई गुड़ाई जड़ी से करना जरूरी है।
0: बिल्कुल कने दिखा कि जियां ए हुण बरसात दा मौसम है तां इस विच क्या हुंदा कि जिहड़े आंधी तूफान वगैरह कहने से भी जोर शोर पर कहने भी चलते हैं है ना। तो सो क्या है कि जो छोटे फलदार पौधे हैं उन्हें जो टकेरने ताएं दी अखे बखे हाँ डंडे भी लगाई सकते हैं या फिर जी लोहे के डंडे भी कहने भी उन्होंने देख रेख ताएं कहने भी हाँ लगाई सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बड़क चाचू। कने इस सोगी ही छंटाई भी जरूरी होंगी जिस जो अहाँ प्रूनिंग भी बोलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जड़ा हाड़ा पौधा है तो कई बार कोई टहनी एक टहनी जड़ी से सुखी आती है या फिर कोई एक टहनी जड़ी से रोगग्रस्त हो जाती है तो तिस जो अहम जो जड़ा सा कट देना चाहिए है ना। इसते क्या होंगे कि जड़ा जितों बीमारी फैलती है सब फैलने पर रुकी आती है। कने सुखी आती है टहनी तो तिस जो भी हाँ जो कट देना चाहिए है। इस सोगी ही पौधे दे अखे बखे जड़ा चोनी बखे जड़ा से सुखे पत्ते होइए घा होइए सुखा या फिर कोई भी अवशेष है जैविक अवशेष है
0: जी।
1: खेती बाड़ी का है ना तो सै पौधे दे अखे बखे चोनी बखे जड़ा से रख बिछाई देना चाहिए है। इसने क्या होंगे कि

0: मिट्टी जड़ी ऐसा नमी जड़ी से बनी रहती है, कने खरपतवार जड़ से घट उगते हैं ना।
1: बिल्कुल कने दिखा कि असदा जी हाँ मते सारे जेडे बागवान भाई कहन भी फलदार पौधा की खेतीबाड़ी करते हैं और उन्हों का जरा संपर्क भी बागवानी विभाग कने के भी रहा है। लेकिन असदा जरा युवा बेरोजगार साथी अगर फलदार पौधे जो मतलब उत्पादन करना चाहता है तो उसके अगर रोजगार करना चाहता तो से जेडे बागवानी विभाग ने या अधिकार ने उन्हें सुखी संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने सलाह मशवरा के अनुसार ही इस व्यवसाय जो कहन भी अपनाई सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: गल्ला बात किसान साथियों अगे भी जा रहे हैं, अहां शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत, तो सुनते ने लोक गीत।
0: जी

0: किसान साथियों, असा आशा करने कि इस संझा दे वेले तुहां प्यारा दे लोकगीत पसंद आए होना। और दिखा ग्लोबो जी की जियां कि हाँ जिक्र करा करदे कि ये जिहड़ा बरसात दा मौसम है, है ना, चाहे बोलिया बरखा हो, चाहे ठंड हो, चाहे धुप हो, असा दे जिहड़े किसान है भाई दे काम काज कन भी नहीं मुकदे हैं, है ना। और दिखा कि जियां कि बरसात दा मौसम है और असा दे किसान साथी जी अपने डंगर बछू भी पाले हैं, है ना। और दिखा कि इन्हें इस बरसात के मौसम च अपना भी सहा ध्यान रखना और अपने माला बच्चू का भी हाँ ध्यान के भी रखना है।
1: बिल्कुल खरी गल गला दे।
0: दिखा कि उन्होंने जी घराला वगैरह कहने भी इसे साफ सुथरी चाहिए, उन्होंने जो बिछाव निके भी बांका चाहिए ताकि उन्होंने बहने ताई एक सुखी जगह मिली जाए। और जियाँ कि असद जे किसान या पशु पालक अपने खेत खलाना च जाते हैं, जियाँ बरखा च अपने माला बच्चू जो गा पट्ठा लिया है ना, या फिर गाछने च जाते हैं, तो दिखा कि कई बार क्या होंगे कि जियाँ हाँ कुछ घा बढ़ देने गाछने तो वो तो सू डंडे कहने जो घा वगैरह के भी टटोली लेना चाहिए, क्योंकि अजकल दिखा कि कई तरह के जेडे जहरीले कीट वगैरह कहने भी इसे हाँ जो नुकसान कहने भी पहुँचाई सकते हैं।
1: बिल्कुल बड़ गजा चू कहने कई बार क्या होंगे कि बड़ा नुकसान हो जाता हाँ
0: जी जी जी जी
1: जी तो हम गल गलाई है कि एक तो हाँ जो अपने रस्ते जड़े आने जाने वाले साफ सुथरे रखने चाहिए, तो इतों जी घा वगैरह उगी आता तो रस्ते जड़े से सारे तो पहले साफ करने चाहिए, है ना। कने दूई गल ये कि जड़ा कीट तो हाँ दस है कि कुछ भी तो हाँ जाना घा बढ़ना है या फिर डंगरे चारना जाना है तो हाँ दिखी सुनी करी चलना चाहिए, कहो कई बरसाती का मौसम है कने कई बार नुकसान हो जाता है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा कि हाँ जी कई बार अपने जी न्याणे जो जी डंगरे कने बेचते हैं जी जंगल च चराने वास्ते या गाछने चराने वास्ते, तो कई बार क्या होंगे कि जी नालू खोलू वगैरह भी होंगे न, और जियाँ कि जेडे असा दे पहाड़ी क्षेत्र हैं जियाँ पहाड़ा पर बरखा लगती है जी धारा धूरा पर, और निचले क्षेत्र च बरखा नहीं लगती है, तो कई बार क्या होंगे कि उन्होंने नालू खोलू च जेड़ा ज्यादा पानी का बहाव के भी आई जाता है, तो उस स्थिति च भी सो मतलब विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई साढ़े जेडे न्याणे से डंगर लेके जा करते हैं तो उन्होंने भी कोई ऐसा नुकसान ना हो और ना असा दे माला बच्चू जो कोई नुकसान हो।
1: बिल्कुल जी दिखा जिकले जड़े इलाके धुप लगी होंगी कने उपर पहाड़ा पर बरखा होंगी है, तो खास करी हूँ छुट्टियां पौनिया दिखे बरसाती की छुट्टियां पौनिया तो अहां भी जाते हैं, है ना बड़का
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अहां जाते हैं, तो अहां एक तो सारे तो पहले अपने बच्चों जो जागरूक करना चाहिए है कि जल उपर बरखा हो तो नालुआ च ना ही नहाना है ना ही सह लंघने ना, है ना। कने दूई गल ये कि तुहां पूरी एहतियात बरतनी इस गला की, कहो जी काफ़ी नुकसान ग्राएं दे विच देखने मिलता है कि आए दिन कोई ना कोई नुकसान होंदा है ना, तो इस सोगी ही बरसाती का मौसम है हाड़े जड़े खास करी किसान हैं सह अपने जड़े डंगरे ने तिना जो धारा जो नींद है ना,
0: बिल्कुल
1: धारा जो नींद दिखा बड़का जा चू धारा का ना सुनी करी ही एक मतलब पहाड़ा का जड़ा नज़ारा सह सामने चली आंदा है ना।
0: बिल्कुल कहने असा दे स्याणे बोलते भी है कि जी बरसात आती है जी धारा नींद ना डंगरे तो यह माला बच्छू की सेहत बनाने का जो एक सीजन के भी रहा है।
1: बिल्कुल
0: और उतो दिखा कि कोई मतलब किसी की कोई वो नहीं है मतलब खेत खलियान नहीं कोई जुआड़ नहीं खुले असा जो पशु के भी चरदा है खुले चारगाह और तरह तरह की मतलब जी जड़ी बूटियां तो उन्हें जो असा जो पशु के भी खाता तो उसकी सेहत भी बरकरार रही है, और खास तौर पर जो दुध देने वाले पशु उस दुध की भी बढ़ोतरी होंगी है,
1: बिल्कुल गुणवत्ता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल कहने दिखा पशुओं जो औषधीय जड़ा चारा मिलता ही है, इससे सोगी हांजो भी जड़ा औषधीय सब्जियां हाड़ी धारा के बीच मिलती है ना बड़का जा
0: जी जी जी जी
1: जी लुंगड़ू हुई है धारा का जड़ा सर अलग ही स्वाद होंदा है ना।
0: बिल्कुल
1: कहने दिखा जलू धार माई जिन्हें गलांदे ना जड़े धारा जाते सह जलू छा लेंदे या दुध लाते या फिर घ्यो लाते कहे कि तिथु जड़ा है हाड़ा दुधे आला पशु है सह काफ़ी दुध दिता है ठंडा इलाका होंगे है कने घा भी सैला सैला तिना चरनी मिलता है कने काफ़ी दुध जड़ा सह तिथु हाड़े डंगरे
0: मतलब दुध के कई जड़े पदार्थ कहने भी से बनाई लेंदे ने।
1: बिल्कुल
0: जी कि अगर मान लिया कोई खोआ बनाई लेंदा है कोई घी बनाई लेंदा है
1: जी बिल्कुल
0: अगर जी खोआ बनाता तो जी कोई मान लिया हफ्ते का स्टॉक हो गया है जी अगर दो चार या पांच सात जेडे भी मतलब साढ़े पशु पालन तो उन्होंने दो तीन जी बाजार बेचना आई जाते हैं तो इस तरह का उन्होंने अपना जो एक कारोबार के भी चलाया हों और बड़ा अच्छा भी लगता है कि दिखा है तो मेहनत का काम और बिना मेहनत तो बोले कुछ भी।

0: नहीं मिलना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: अगर
1: काम है मेहनत हाँ जो परिश्रम जड़ा से जरूर करना चाहिए, लेकिन परिश्रम ताई यहाँ करी पाते जा लोहाड़ी सेहत हाड़ा जड़ा शरीर है, शरीर जड़ा से स्वस्थ होगा है ना। कने शरीर जो स्वस्थ रखना है तो सारे ते पहले हाँ जो ध्यान रखना है कि हाड़ा खान पान जड़ा सा एक ता साफ सुथरा होना चाहिए है, दुआ से पौष्टिकता ते भरपूर जड़ा सा खान पान होना चाहिए। दिखा बड़का जाचू पहले हाड़े स्याणे होंगे है ना, से दुध जड़ा सा काफ़ी मात्रा जड़ा सेवन करते हैं, इससे सोगी हरी सब्जियां जिन्हें दे विच जड़ा की कोई
0: बिल्कुल भी
1: भी
0: मतलब रासायनिक खादा
1: कीटनाशक
0: का प्रयोग नहीं होता
1: जी
0: था, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल से सब्जियां खाते हैं। कने अनाज भी ऐसा होता है जिस जो जड़ा की ऑर्गेनिक विधि ने जड़ा से तैयार किया होता है, गोबर दी खाद ही से पाते हैं। कने कोई भी बाजारे ते अंधिया कोई भी चीज जड़ा से इस्तेमाल नहीं करते हैं खेतों च ना, ता से हमेशा जड़ा से स्वस्थ रहते हैं। कोई बीमारी तेना जो अजकल दिखा नोइया नोइया बीमारियां कने दिखा घर घर जड़ियां से फैला कर दिया, ता कारण यही है कि यहाँ
0: साड़ा जड़ा खान पान है इस दे जड़ी बीमारियां कहने भी पैदा हुआ कर देना है।
1: बिल्कुल
0: तो सांझो बिल्कुल अपना जड़ा जियां हाँ अनाज पैदा कर देने या सब्जियां पैदा कर देने और असा दे जड़े विशेषज्ञ भी गलांदे कि सांझो फिर दे आटे फिर के जड़ी जैविक खेती है उस दी तरफ आना पौना है। जड़ी की जैविक खेती अज दे 40 साल पहले जी असा दे बुजुर्ग करते थे बिल्कुल अपने जड़े माला बच्छू का गोहा गोबर होंदा था या फिर भेड़ बकरी का जड़ा गोहा गोबर होंदा था उसका ही इस्तेमाल के अभी खेत खलियान च किया जाता था।
1: जी
0: तो असा ये आशा करते हैं ऐसा नहीं कि गुलाबों असा दे जड़े किसान साथी कहन भी बड़े जागरूक बने और काफ़ी जड़े किसान साथी कहन भी इस जैविक खेती जो करा करते हैं प्राकृतिक खेती जो करा करते हैं और जियाँ कि असा दे टियाले पर भी किसान साथी आते हैं जालू अहाँ उन्होंने गलबात करते हैं तो उन्होंने ये लगता है कि भाई दसते हैं कि भाई जी ये प्राकृतिक खेती है इसके कितने फायदे हैं और असा दा सेहत ताई कितने फायदे हैं और जड़ा उत्पाद पैदा होंगे से खाने ताई भी स्वादिष्ट होंगे है।
1: जी बिल्कुल
0: तो ये छोटी छोटी गल्ला लेकिन फिर भी कमे वाली गल्ला ना और असा फिर दे टियाले दे माध्यम कने ये गलांदे ना अपने किसान साथी की भी जितना भी हो सकता तुहां प्राकृतिक खेती की तरफ होवा और अपना आप जो भी स्वस्थ रखा और पर्यावरण जो बचाने च भी सहयोग करा।
1: जी
0: तो गल्ला बात अगे भी किसान साथी जा रहे हैं फिर दे अहां शामिल करना एक प्यारे दे लोकगीत पर उसके पहले सुन देने
1: स्नेह
0: स्नेह।
1: जी
2: क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम मौजा ग्राह दियां हेतु संपन्न करदा हुण सांझो दोनों दया अनुमति अच्छा जी जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग ग्राइंडियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

0: ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग लियांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshni, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harbinder Singh Vandra and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva.

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुना करते सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो एक बारी फिर दे बड़का चाचू तरफा दे राम राम कने किसान साथियों ट्यालेपुरे मंजसो की गुलाबो तो गुलाबो जी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी राम राम एक बारी फिर ते राम राम जितने भी हाड़े सुनने वाले स्रोते ना ते ना सबनी जो एक बारी फिर ते राम राम देखा ना बड़का चाचू राम राम जितनी बारी बोलिए उतना कम है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखा इसी बहाने अहां इत्थों मिलदे कने इक्की दुए दे जड़े से अनुभव जड़े से साझा करदे ने कने कदी हाड़े ट्याले पर किसान उन्नत किसान जड़े से सभी रहिंदे कदी जड़े विशेषज्ञ होंदे सभी रहिंदे कने हाड़ी कोशिश यही रहिंदी है कि कोई ना कोई जानकारी अहां इत्थों ट्याले ते जड़े से अपने सुनने वाले तकर पुजान कने दिखा बड़का चाचू ये मक्की दी हाड़ी फसल जड़ी से लगी चुकी है निराई गुड़ाई भी हो गई है
0: बिल्कुल
1: लेकिन हुण जड़ा से बरसाती जड़ी से लगभग शुरू होने जो है ता हाँ ध्यान रखना है कि पानी दा जड़ा निकास है हाड़े मक्की दी खेती दे विच से जड़ा से हाँ बड़ा ध्यान रखना है कि निकास पानी दा जड़ा से चले वगैरह जड़े होंदे से हाँ टाइम रहिंदे जड़ा से बनाई लैने ने ताकि दिखा जालू भारी वर्षा होंदी है बरखा पौंदी है ता हाँ जो पता नहीं लगता कि मक्की दे खेता दे खेत कालू जड़े से बोलदे लम्मे पई आंदे है ना
0: बिल्कुल कने दिखा कि असा दे किसान साथी है ता जालू मक्कियां दी बिजाई कर देन ता जेड़े निकासी दा प्रबंधन ता बिल्कुल उना किते हुंदा है। लेकिन कई बारी क्या हुंदा कि ज़्यादा बरखा हो जांदी और क्या हुंदा कि ज़्यादा बरखा होने दे बाद पानी के भी एक साइड आ जांदा ता उस दे जेड़े खेत्र कहने भी लुड़ने की संभावना रहती है कई बार फसल खराब होने की जी संभावना के भी रहती है तो सांझो मतलब संझा भी है अपने खेत खिलाना आना जाना चाहिए और पूरी देख रेख करना चाहिए है। और बोलते हैं कि जालू पौधा थोड़ी दी बढ़वार लेंदा तो उस कई तरह की बीमारियां लगने की संभावना के भी रहती है तो सांझो अगर कोई ऐसा पौधा पाया जाता है कि जड़ा कि मतलब उस कोई ऐसी हरकत आवा करती तो अह सीधे जेडे विशेषज्ञ ने उन्होंने की संपर्क कर सकते हैं। और उपरे देखा है कि अह इस बरसाती के मौसम से कई तरह की जी बेवदार सब्जी कहने भी लगाई होती है जी कि कद्दू होई गए काकड़ी होई गए या फिर रौंगा की सब्जी होई गई या करेला मतलब कई तरह जी सब्जियां लगाई होती हैं तो सजो उसका भी जरा उचित जरा रख रखाव के भी करना चाहिए जालू उसे बेल के भी ज़्यादा लंबी होंगी तो उस सजो जे कई बार लोहे के जाले बनाते हैं जेड़े असाद किसान साथी जी कि बड़ी भारी मात्रा च जी अपनी बेलदार सब्जी की खेती करते हैं या कई बार जी बांस के डंडे लाइन देने जिस तरह के होंगे कि जालू बेल के भी सुरक्षित रहते हैं तो से ज़्यादा बढ़ती है और उस ज़्यादा जेड़े मतलब फल सब्जी कहने भी लगती हैं
1: जी बिल्कुल बड़का चाचू देखा इन्होंने सब्जियों से जरूरी रहता है कि हाँ इन्हों की देखभाल जड़ा सह करते रहन खुद की देखा हाड़े करेले न या फिर लौकी है तो इन्हें जो बड़ा जरूरी होंगे कि इन्हें सहारा जड़ा देना से बड़ा जरूरी होंगे इसके सौगी ही अहां जड़ा से ये भी ध्यान रखना है कि अपना जड़ा पशु धन है इस वेले बरसाती दे मौसम दे विच तिन्हें जो हरा चारा भरपूर मात्रा दे विच जड़ा से बरसाती दे मौसम दे विच रहिंदा है ता तुहां जड़ा से हरा चारा जड़ा से किला नहीं देना है ना मलाई करी सुखा कने हरा चारा हां मलाई करी खवांदे न ता एक संतुलित आहार हाड़े पशुओं ताई जड़ा से तैयार हो जांदा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जालू जहां जालू अहां हरा ही चारा संजा भ्यागा अपने पशुओं पाते तो सभी जड़ा सह खराब लगता है तो इस ताई हाँ जो उपराले ने या फिर सुखा गा जड़ा हाँ भंडारित करके रखे होंगे तिसने मिलाई करी हाँ अपने पशुओं जो सुखे ने हरा चारा मिलाई करी खुआन तो अच्छा रहता है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कने ये छोटिया छोटिया गल्ला ने बड़का चाचू कने हाड़े सुनने वाले पता भी है कि अहाँ किया कम करना है पर कई बार क्या होंगे कि अहाँ इक्की दुए के अनुभव जड़े से तिथे सीखते हैं इसके सोगी ही ग्रां के बच्चे जड़िया हाड़िया महिला हैं हूँ बरसाती के टाइम तिना अपने कम कमाई करे दिखा तिना अपना ही कम जड़ा सा शुरू कर दिए है ना कजे तुम पता है कि ग्राएं दिया जड़िया महिला हैं स जड़ा स बेलियां नहीं बहनियां कजे छोनी बखे विकास जालू तिकर नहीं होगा तालू तिकर क्या अज दे टाइम पर जड़ा से चहुमुखी विकास ताई हो सकता जालू हाँ चहुमुखी सोच रख गए ना
0: बिल्कुल तो किसान साथी गल्ला बात सदियाँ अगे भी जा रहे हैं पूर्ण हाँ शामिल करना एक प्यारे दे लोकगीत सुनते ने लोकगीत लो

0: किसान साथी असा आशा करने कि यह प्यारे दे लोकगीत तुसां जो पसंद आया होना और इस लोकगीत दे बाद उन्हां चलना अगली जानकारी दी तरफ ता सुनदे ने जानकारी
1: जी।
2: किसान साथियों जियां कि तुहां जानदे हन कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसानां कन्ने कीती गई गलबात होवे। तहसील जुआली दे ब्लॉक नगरोटा सूरियां च कन्ने ग्राएं दा जिहड़ा नां से तलियाल, इत्थों मेरे कन्ने एक उन्नत किसान जिहड़े से जुड़ा करदे हन उह करदे ने इहनां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा।
3: मेरा नाम है राकेश कुमार राणा
2: जी। राकेश जी, ता राकेश जी खेती बाड़ी करते तो? हाँ
3: हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा, कितना के अरसा हुई है खेती करते?
3: असा 2016 च शुरू किया था नेचुरल फार्मिंग दे कॉन्सेप्ट पर काम करना।
2: अच्छा,
3: तो असा शुरुआत की थी हल्दी कने एलोवेरा करने।
2: हाँ जी।
3: साड़ा मुख्य उद्देश्य था कि छोटे किसान कने मंझली जोत वाले किसान जेड़े है ना,
2: हाँ जी,
3: सक ऐसी क्या चीजा उगाइए ताकि किसान मार्केट कन्नै जुड़ी सके।
2: जी जी हाँ जी।
3: क्या उत्पाद होना चाहिए साड़ियाँ जमीना च, क्या चीजा उगाइए?
2: हाँ जी।
3: ताकि तिना दी यहाँ प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग भी करिए कने यहाँ सीधे मार्केट च तिना चीजें पहुँचाइए ताकि किसान मार्केट कन्नै जोड़न कने किसान ने फायदा हो।
2: अच्छा,
3: तो असा 2016 च शुरू किया था हल्दी कन्नै।
2: अच्छा,
3: तो हाँ हल्दी दी अलग अलग किस्म लगाइया, तो इस असा फिर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की, पैकेजिंग भी स्टार्ट की।
2: हाँ जी।
3: फिर यहाँ 5-6 प्रोडक्ट लेके मार्केट च आए।
2: अच्छा,
3: तो मार्केट च समझो साड़ी जड़ी क्वालिटी थी से अहाँ जमीना दे ले के पैकेजिंग तक मेंटेन रखी।
2: हाँ जी।
3: तो इस करके समझो अच्छे रिजल्ट मिले कने हाँ हौला हौला इस कम में बधा देना कन्ने हाँ उसके बाद एलोवेरा भी स्टार्ट किया जमीना च लगाना।
2: राकेश जी जी तुम दसिया ना कि हल्दी पर तुम काम शुरू किया।
3: हाँ जी।
2: ये हल्दी कौन, ये कोई किस्म है कोई हल्दी दी?
3: हाँ जी, असा 5 किस्म ही हल्दी पर काम करा दे।
2: अच्छा,
3: तिस एक साड़ा प्राचीन बीज था जिहड़ा साड़े दादा दादी दे टाइम दा बीज हुंदा था।
2: हाँ जी।
3: जिस हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी।
2: अच्छा,
3: बिल्कुल प्योर देसी बीज था।
2: हाँ जी।
3: दूजा बीज अहा एक ट्रायल लिया था प्रगति किस्म दी हल्दी पर।
2: अच्छा,
3: तीजा हाँ ब्लैक टर्मरिक पर भी ट्रायल लै दे।
2: हाँ जी।
3: कने एक बीज था से भी बड़ा रेयर मिलता है, से बीज था कस्तूरी मंजर।
2: अच्छा,
3: तो कुछ बीज जड़े हैं सह असा पाउडर बनाई के पैकेजिंग करी के बेचा दे।
2: हाँ जी।
3: बाकी जड़े बीज है ना हल्दी दे तिना दी जड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, औषधीय गुण जड़े हैं ना।
2: हाँ जी।
3: सह दुईया नॉर्मल टर्मरिक ते ज्यादा है ना, तो तिना दे हाँ प्रोडक्ट बनाई के फिर यहाँ मार्केट च सेल करा दे, कन्ने कन्ने हाँ एलोवेरा की खेती भी बढ़ा दे।
2: अच्छा,
3: हल्दी का हाँ पाउडर, टर्मरिक फेस ऑयल।
2: हाँ जी।
3: टर्मरिक फेस पैक।
2: हाँ जी।
3: टर्मरिक स्किन केयर ऑयल।
2: अच्छा,
3: ये बना दे कने एलोवेरा दा हाँ एलोवेरा पाउडर बना दे।
2: अच्छा, ये सारी चीजें घर ही बनाते तू?
3: ये सारी चीजें घर ही बनाई हैं कने फिर वहाँ पैकेजिंग करके इसे बेचा दे।
2: अच्छा, तो जी तुहां दस्सिया कि हल्दी भी लगा दे तो हाँ कने सोगी एलोवेरा भी लगा करते हैं, तो कुल कितनी की जमीन है तुहां वाल?
3: 8 कनाली जमीन है।
2: अच्छा,
3: हल्दी यहाँ ज्यादा लगा दे, हल्दी लाइन च लगा दे, तो कई बार यहाँ बीच वाली रहन जी एलोवेरा भी लगाई।
2: अच्छा, राकेश जी जी तुम दसिया ना कि तुम नेचुरल जरा सारा ये काम करा करते हैं।
3: हाँ जी।
2: तो प्राकृतिक दे पहा तुम रुझान कि हो यार? कुछ तो तुम जी प्रेरणा मिली कि प्राकृतिक तरीके कने किते जाए?
3: एक्चुअली क्या हो रहा था साढ़े पास जरा केमिकल कने पेस्टिसाइड का जरा यूज हो रहा था।
2: हाँ जी।
3: सही तरीके ने नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा चाहे केमिकल कने पेस्टिसाइड यूज करा दे थे।
2: हाँ जी।
3: सह जरा केमिकल पेस्टिसाइड अहा जमीना दे पा दे थे, अनाज के थ्रू साढ़े शरीर च भी पुजा था।
2: बिल्कुल।
3: तो इस कन्ने सारिया बीमारियां भी बधा दी थी।
2: हाँ जी।
3: साड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ था क्योंकि सू पौष्टिक अनाज नहीं मिला था, पौष्टिक सब्जियां नहीं।

0: मिल रही हैं या पौष्टिक हल्दी भी नहीं मिल रही
1: हाँ
0: थी।
1: जी
0: तो उस वजह ने मेरा विचार आया था 2016 च कि कुछ खेतर जहाँ ऐसा काम करिए बिना केमिकल पेस्टिसाइड थे, ताकि जड़ी भी खेते जो चीज़ तैयार हुआ है से बिल्कुल शुद्ध तरीके ने प्राकृतिक तरीके ने तैयार हुआ है।
1: जी दिखा बड़ी खुशी की गल है जल्द अहाँ कन्ने प्राकृतिक तरीके कन्ने खेती करने वाले किसान जल्द अहाँ कन्ने जुड़ते हैं। अच्छा तो प्राकृतिक तरीके कन्ने जल्द अहाँ करते हैं तो अहाँ दे सुनने वाले तो अहाँ ये दसा कि कौन कौन घटक जड़े से तो अहाँ बनाते हैं अपनी जल्द हल्दी कन्ने यदि जल्द खेती तो अहाँ करनी है जी खाद कौन कौन पाते इस
0: हाँ,
1: बीच फ्री बनाई के।
0: इस बीच खाद हाँ पाई सकते, देसी गाय दे गोबर कन्ने असा घनजीवामृत बनाई सकते,
1: हाँ जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते
1: हाँ
0: असा।
1: जी जीवामृत हो ही
0: हाँ जी घनजीवामृत हुई है,
1: हाँ जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते हाँ कन्ने इसी सॉलिड फॉर्म च भी बनाई सकते, गोठू हाँ ही जी पहले गोठ बनाते उस फॉर्म च भी बनाई सकते, इसी
1: हाँ जी
0: सह कर सकते हाँ। डायरेक्ट हाँ देसी खाद भी यूज कर सकते डायरेक्ट असा, मैक्सिमम जी गोट मैन्योर जिसे बोलते मिंगन वाली खाद भी हाँ, मैक्सिमम मिंगन वाली खाद भी यूज कर लेते बिच।
1: अच्छा तो तुहां जो कदे इदे जड़े से रिजल्ट कदे लगदे कि प्राकृतिक तरीके कने वधिया बांका काम हो करदा।
0: बड़ा बढ़िया काम हो रहा, जल्द असा अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट च स्टार्टिंग च गए रहे संजो, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि सारा लगभग लगभग 90% कस्टमर जो सर रिपीट कस्टमर है।
1: अच्छा हाँ जी दिखा कर अजकल का जड़ी साहब देसी कोई भी अगर हाँ का उत्पाद है देसी तरीके कने तैयार किते हैं तो दिखा बाजार विच जड़ी साहब दिनों दिन जड़ी साहब मांग बिल्कुल
0: हाँ
1: बढ़ा
0: जी
1: कर दी
0: बदल
1: है ना। तो ये तो हाँ दस कि 2016 च तो हाँ प्राकृतिक खेती कने जुड़े प्रशिक्षण को तो लिया तो हाँ ये
0: इस तरह प्रशिक्षण तो असा बड़ी बात लिया हाँ, काम बड़ा पहले ही शुरू करी थे हाँ, दो
1: अच्छा
0: हजार 2021 च आत्मा दे थ्रू फ्री इस तरह प्रशिक्षण लिया था
1: अच्छा कुतु की है तो
0: ये
1: हाँ
0: नगरोटा सोरी है
1: नगुट्टा सूरी ब्लॉक ची ट्रेनिंग हुई ही।
0: हाँ, एक खब्बल ट्रेनिंग हुई थी, 2 दिन का कैंप था इतो
1: अच्छा
0: तो उतो ट्रेनिंग हुई थी
1: हाँ जी
0: हाँ, तो इसके बाद असा से चीजा सारिया सीखिया।
1: अच्छा तो जी प्राकृतिक का तो हाँ जिक्र किया है इस तरह घर देसी गाय भी रखी हैं।
0: देसी गाय एक गाय रखी है, देसी
1: अच्छा दुध भी दिन दी होनी
0: दूध भी दिन दी है।
1: अच्छा अच्छा राकेश जी तो हाँ दस्या कि जल तो हाँ ये खुद उत्पाद तो हाँ बनाते हैं पैकिंग वगैरह भी तो हाँ सारी आपू करते हैं
0: हाँ जी
1: इससे बाद ये बेचना को तो अभी नहीं के।
0: असा व्हाट्सएप के थ्रू ही साढ़े कस्टमर की चेन है साड़ी, असा जयपुर भी भेजते कुछ हल्दी पाउडर, कुछ
1: अच्छा
0: पठानकोट भी भेजते, कुछ
1: अच्छा
0: हरिद्वार कने दिल्ली भी कस्टमर हैं साढ़े,
1: हाँ जी
0: तो जल्द असा साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं, जल्द असा पैकेजिंग करते साले की हल्दी पैकेजिंग एक बारी होती,
1: हाँ जी
0: तो जितनी भी क्वांटिटी साढ़े वाल अवेलेबल होंगी
1: हाँ जी
0: है टर्मरिक पाउडर, तो असा जरा असें पैक करके जो साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं उन्होंने पूरे साल का कोटा तिन्हें भेजी देते बाई कोरियर।
1: अच्छा अच्छा जड़े तो हाँ दस्या है पाउडर इसी बनाने की विधि दसा कि बनाना है शुरुआत से चढ़ सा कि करना हल्दी के बाद हाँ कौन दिया काम करना कि जिससे हाँ कि पाउडर बनाना है क्या क्या करना
0: हल्दी
1: पौधा।
0: हाँ जल खेतरे से निकालनी है
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: इसके बाद हाँ तिसाइया पहले जड़ा कटनी है
1: अच्छा साफ करनी है
0: हाँ
1: हाँ
0: जी, जड़ा कट्टी के असा तुम मेरी पानी साफ करना,
1: हाँ जी
0: साफ करी के तुम हाँ स्लाइसिंग कर देनी हल्दी दी जड़ा दी
1: अच्छा
0: स्लाइसिंग करी के,
1: अच्छा
0: इसके बाद असा फिर तुम सुखाते सोलर ड्रायर।
1: अच्छा
0: सोलर ड्रायर च जो सुखाने का फायदा है कि जो साड़ी हल्दी है सर डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट च नहीं आती,
1: अच्छा
0: तो तिस जो वॉलेटाइल कंटेंट है मतलब जिस ऑयल की जी मात्रा है सर बिल्कुल सेफ रही, तो साड़ी क्वालिटी जी से इंप्रूव हो जाती है, इसके बाद असा इसे ग्राइंडिंग करवा लेंगे।
1: अच्छा बाकी फिरी बाद च पाउडर बनी है
0: हाँ जी फिर पाउडर
1: फिर
0: बनी है,
1: हाँ
0: फिर
1: जी
0: यहाँ आधा किलो ही पैकिंग करके ऊपर स्टिकर
1: अच्छा
0: वगैरह लगाई के, तो
1: अच्छा
0: जो जो साढ़े परमानेंट कस्टमर है ना
1: हाँ
0: तिन्हें
1: जी
0: पूरे हाँ साल का कोटा बाई कोरियर भेजी दे,
1: अच्छा इस चीज़ ने कि और कुछ मिक्स नहीं करना ना।
0: इस और कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ
1: अच्छा तो
0: जी
1: जी आधा आधा किलो की पैकिंग है इधर क्या भाव रहा जल बेचना तो हाँ जी थोक भाव च बेचना या भी कुछ हिसाब कने बेच दे।
0: असा इसियो रिटेल च बेचते हैं।
1: अच्छा ऐसा दिखा ऐसा मानने जाता ना कि प्राकृतिक तरीके कने जड़े हैं उत्पाद तो तैयार करते हैं ना उन्होंने जड़ा सा थोड़ा मोल भाव जो थोड़ा ज्यादा होंगे है तो
0: हाँ
1: हाँ जो क्या उस तरीके कने भाव मिली आ दे।
0: हाँ नॉर्मल हल्दी 350 350 रुपए किलो रेट है मार्केट से, 450 किलो है, 450 रुपए पर किलो।
1: अच्छा अच्छा एलोवेरा का जिक्र तो हाँ किता
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते तो हाँ
0: एलोवेरा दे तो काफी सारे प्रोडक्ट बनी जाते हैं, पर हाँ सिर्फ हल्ले पाउडर पर ही ट्रायल लिया एलोवेरा दे पत्ते कट्टी के तुम बारीक स्लाइसिंग करी के हाँ तुम अभी सोलर ड्रायर से सुखाते,
1: अच्छा
0: जब उसे सोलर ड्रायर से पूरी तरह सूखी जाता
1: हाँ
0: तो तुम
1: जी
0: हाँ मैनुअली ग्राइंड कर लेंगे,
1: अच्छा
0: जी साड़ियाँ पुरानी चक्कियाँ थी
1: हाँ जी
0: हाँ तिना ने भी ग्राइंड कर लेंगे, कहना छोटी जी मसाले वाली मशीन होनी है
1: हाँ जी
0: तिना कहना ग्राइंड करके हाँ बारीक पाउडर बनाई के तुम हाँ फेस पैक से यूज करते।
1: अच्छा
0: साड़ा एक प्रोडक्ट है टर्मरिक फेस पैक,
1: हाँ जी
0: तो हाँ टर्मरिक फेस पैक से कुछ क्वांटिटी जी है हाँ एलोवेरा पाउडर की भी यूज कर लेंगे।
1: हाँ जी तो जी तो

0: दस्या कि तुहाडा ब्लॉक जिहड़ा सा नरोटा सूरियां कने आत्मा प्रयोजन वाले जिहड़े जुड़ी रहिंदे ने।
1: हाँ जी,
0: तो इहदे अलावा जिहड़ियां तुहां प्राकृतिक दी तुहां ट्रेनिंग जिहड़ी सा कीती हुई है, प्रशिक्षण लिया,
1: हाँ जी,
0: इहदे अलावा जिहड़ियां और कई तरह के ऐसे प्रशिक्षण जिहड़े शिविर लगते हैं, कोई होर भी तुहां ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह कीती है कोई?
1: हाँ जी, साल मई च सुभाष पालेकर जिहड़े हैं महाराष्ट्र के, जिन्हें प्रकृति खेती पर पद्म श्री पुरस्कार मिलिया।
0: हाँ जी, हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी, तो तिना की वर्कशॉप थी मई महीने।
0: अच्छा,
1: तो गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल के किसान भेजे थे इतों, मैं गया था।
0: अच्छा, कौन सा जगह ही है?
1: 7 दिन की वर्कशॉप थी नासिक।
0: अच्छा, नासिक।
1: हाँ जी, नासिक थी महाराष्ट्र। टर्मरिक हल्दी जड़ी है, से एक बड़ा जबरदस्त औषधीय पौधा है।
0: हाँ जी,
1: असा टर्मरिक कने एक स्किन केयर ना दा एक प्रोडक्ट बनाया।
0: अच्छा,
1: इस स्किन केयर प्रोडक्ट कने लगभग लगभग सारिया स्किन दिया जितनिया भी बीमारियां है ना, स्किन डिजीज जितनिया भी है ना,
0: हाँ जी,
1: से सारिया सारिया ठीक हो रही। सह प्रोडक्ट जेड़ा साड़ा बाकी सारे प्रोडक्टा दे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है।
0: अच्छा अच्छा, राकेश जी एक गल हाँ और करते हैं, जे जेड़े तुहां अपनी जितनी भी तुहां खेती करते हैं, तुहां दा जेड़ा इलाका है, तू सिंचाई का क्या साधन है, पानी कोई क्या कियां करदे तुहां अपने खेतों च? पूरा
1: साढ़े पास सिंचाई की कोई भी व्यवस्था ही नहीं है, पूरी तरह से बिल्कुल बारिश के पानी पर ही डिपेंड है ना।
0: अच्छा,
1: तो अस जेड़े भी साढ़े एरिया चंगर एरिया है,
0: हाँ जी,
1: तो इस संजो बरसात की बारिश ही यूज करते हाँ पानी, तो उस हिसाब ने ही अस अपनी फसलों का चयन कर सकते।
0: हाँ जी, अच्छा, बरखबर है पूरा ये इलाका है?
1: हाँ जी, हाँ जी, बरखबर ही पूरा इलाका डिपेंड।
0: दिखा जी विभाग द्वारा या कुछ पंचायत स्तर पर जी पानी के कोई खड्डे या कोई टैंक वगैरह बनते हैं, सीओदे नहीं बनाए तुम कुछ भी?
1: नहीं, सीओदे टैंक सड़ा नहीं बने कोई,
0: बरसाती पानी रोकने वास्ते जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, सारा टैंक नहीं बनिया कोई भी अलग।
0: अच्छा, यानी कि बरखा जलू मौसम भर है उसी कन्ने ही तुहां जड़ा सा अपना खेती करते हैं। देखा प्राकृतिक खेती का ये जड़ा सिद्धांत भी है कि इस जड़ा सा हाँ घट पानी कन्ने जड़ा सा एक बाकी खेती जड़ी सा कर सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो राकेश जी देखा अहां दे जड़े बेरोजगार युवा साथी हैं सह देखा नौकरियों पिछे तो तू घूमा करते हैं, भले तेना जी अपनी खुलियां जमीन हैं, तिन्हें तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि साढ़े चंगर एरिए कुछ नहीं हो सकता।
0: हाँ जी,
1: जदों असा ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे विचार च जिहड़ा विचारिक उद्देश्य था यही था कि एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चंगर एरिए कि असा अपनी जमीन दे उपज यो कि मार्केट कने जोड़ी सकीए।
0: हाँ जी,
1: तो अगर मार्केट दिखी के अगर कि कुछ मार्केट च कुछ चीज़ की डिमांड है,
0: हाँ जी,
1: अगर वही तैयार की जाए और उसे डायरेक्ट मंडी च ना ले जाई के अगर प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग खुद की जाए और खुद किसान मार्केट च जाए तो फायदा किसान उठाई सकता।
0: जी राकेश जी, तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा किते, अपना कीमती समय तुहां अहां जो दिता, तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी किसान साथियों, कार्यक्रम है खेतीबाड़ी कने अहां सुना करदे थे भेंट वार्ता दा एक अंक। आशा करदे ने कि तुहां जरूर इस गलबात दा फायदा जड़ा सा लेंगे। किसान साथियों, कार्यक्रम दे विच हुण अग्गे वधणा कने अग्गे चलना है मौसम दी तरफ। मौसम दे विच अहां सारे ते पहले कांगड़ा दी गल करिए, ता अज कांगड़ा दा अधिकतम तापमान जड़ा सा 33 डिग्री कने न्यूनतम जड़ा सा 27 डिग्री रहा है। कल दा कांगड़ा दा अधिकतम तापमान 33 डिग्री कने न्यूनतम 25 डिग्री रहना है। पालमपुर दा अज दा अधिकतम तापमान 28 कने न्यूनतम 22 डिग्री सैल्सियस रहा है। कल दी गल करिए किसान साथियों, ता 27 डिग्री अधिकतम कने न्यूनतम 21 डिग्री रहना है। चंबा दा अज दा अधिकतम तापमान 26 डिग्री कने न्यूनतम 19 डिग्री रहा है। कल दी गल करिए 26 डिग्री जड़ा सा अधिकतम रहना है कने न्यूनतम 19 डिग्री। ऊना दा अज दा अधिकतम तापमान जड़ा है सै 35 डिग्री कने न्यूनतम जड़ा सा 28 डिग्री रहा है। कल दा ऊना दा अधिकतम तापमान 36 डिग्री कने न्यूनतम 27 डिग्री रहना है। इससे सोगी ही मंडी दी अहां गल करनी है। मंडी दा अज दा अधिकतम तापमान 30 डिग्री कने न्यूनतम 33 डिग्री जड़ा सा न्यूनतम 23 डिग्री रहा है। कल दा मंडी दा अधिकतम तापमान 29 कने न्यूनतम 22 डिग्री सैलसियस जड़ा से रहना है। किसान साथियों, आने वाले 2 दिन जड़े से मौसम मिला जुला कने जड़े हाड़े उच्चे पर्वतीय क्षेत्र तिथू हल्की बरखा जड़ी से होने दी संभावना जड़ी से बनी है। किसान साथियों, कार्यक्रम खेतीबाड़ी दे विच अहां अगे वधना है कने अगे सुनना प्यारा जिहा लोकगीत।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी एतु संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोगिया सुनील शर्मा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्याल दे सत से बड़का चाचू
1: कने गुलाबो जो दे अनुमति।
0: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा,
2: इसमें क्या होगा? इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हाँ!

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी व पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर और उप महापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उप महापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और

0: सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित 1000 मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 5 वर्ष तक 65,000 रुपये और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक व डीजल यात्री बसें पात्र होंगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नव निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव स्थगित किया गया। अब ये चुनाव 1 जुलाई को होगा।
1: फोरम की रिक्वायरमेंट 3/4 होती है टोटल आपके इलेक्टेड काउंसिलर, तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में वो कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने की वजह से अब आगे इसको नियम अनुसार स्थगित किया गया है। हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव सम्पन्न कराएंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
2: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए, तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: उधर सोलन में भी उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नव निर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण महापौर व उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि अब महापौर व उपमहापौर का चुनाव 2 जुलाई को होगा।
3: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख को 3 बजे रखा गया। सदस्यों के कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि राज्य सरकार भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का कार्य कर रही है।
4: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली धनराशि का लाभ अपने चहेतों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.25 करोड़ रुपये का टेंडर जारी होने के बाद निरस्त कर दिया। ये टेंडर गाहरा लोहारड़ा सड़क के निर्माण के लिए जारी किया गया था। राजेंद्र राणा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में उनके कार्यकाल की विधायक प्राथमिकता से नाबार्ड में स्वीकृत पुआड़ दरली सड़क की लोकेशन बदल दी गई है, जिससे मूल लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि सुजानपुर सर्किट हाउस में रेलिंग निर्माण को लेकर भी अनियमितता बरती गई है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टेंडर जारी किया गया, जो नियमों के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने इन मामलों की विजिलेंस जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मौसम व मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद ही किन्नर कैलाश यात्रा करवाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर देव समाज ने प्रशासन से धार्मिक व पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का हवाला देकर इस यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए किन्नौर जिला में कड़छम बांध प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर आज रात 8 बजे से नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन व बांध प्रबंधन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतलुज के किनारे न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। लाहौल स्पीति जिला के जहालमा नाले में आज अचानक बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिला में तेज धूप के कारण ग्लेशियर पिघलने से ये बाढ़ आई है। पानी के तेज बहाव से सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और मनाली उदयपुर व पांगी किलाड़ सड़कें भी बंद हो गई हैं। क्षेत्र के लोगों ने सरकार व प्रशासन से सड़क संपर्क बहाल करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी और पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर व उपमहापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अंब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के लिए 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर दिनांक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10.2 पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 समय शाम 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद किसी भी आवेदक अभ्यर्थी से आवेदन दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय संबंधित पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं आशा भोसले और तलत अजीज की गाई इस गजल के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे सतिंदर सरताज का गाया ये पंजाबी गीत।
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी।

0: की ब्रेजा, अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 और 50 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनिया आनंद के गाए ये देश गान। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9 रिले किए जाएंगे।
1: संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं।

0: प्रथम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफ़ी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य

E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत

0: देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dikshit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal

सचिन जिगर की जोड़ी में शामिल हैं। सचिन संघवी और जिगर सरैया दोनों का जन्म और पालन पोषण गुजरात में हुआ। संगीत के प्रति गहरी रुचि ने इन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे यह जोड़ी भारतीय फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ियों में शामिल हो गई।

सचिन जिगर ने अपने करियर की शुरुआत प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती और एआर रहमान जैसे दिग्गजों के साथ सहायक के रूप में काम करके की। वर्ष 2009 में फिल्म लाइफ पार्टनर से उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में शुरुआत की।

अपनी रचनात्मकता, मधुर धुनों और नए प्रयोगों के कारण सचिन जिगर आज भारतीय संगीत उद्योग की सबसे चर्चित संगीतकार जोड़ियों में गिने जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:23 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। इस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं धर्मेश नगरोत्रा के गाए इस शिव भजन के साथ।

सुन रहे थे पवन डोगरा का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वर्षा कटोच का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं और हम हाजिर हैं स्टूडियो में आपके पसंद

0: गीत हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में। जी हाँ, खूबसूरत सा अंक लेकर फिर से हाजिर हैं और आज का ये अंक आप सुनेंगे अपनी रेडियो दोस्त रेनू मन कोटिया के साथ। कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब आप सब हम संग सजीव जुड़ते हैं, बातें भी होती हैं और साथ ही आपके बारे में हम जानते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ जिन्हें आप चुनते हैं हमारे द्वारा चयनित की गई फिल्मों से। तो आज भी हमारे पास कई फिल्में हैं लेकिन फ़ोन नंबर वही है जिसे आपको मिलाना है और बात हमसे करनी है। नंबर है 01892224391। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपको अपना टेलीफोन नंबर बता देते हैं 01892224391। और अब हम बताएंगे उन फिल्मों के नाम जिन्हें हम आपके लिए चयनित करके लाए हैं। फिल्में हैं दोस्ती, फ़र्ज, पद्मावत, हमराज, कर्मा, दिलवाले, दो रास्ते, तकदीर, वास्तव, स्वामी, सनम, सत्यम, शिवम, सुंदरम, पालकी, परिणीता, मेरे हुजूर, हमराज, नीलकमल। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अगले एक घंटे तक फिल्मी गीतों, आपकी फरमाइशों और दिलचस्प बातचीत के इस संगीतमय सफ़र के लिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत समर्पित कर सकते हैं अपने प्रियजनों, मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। तो जी, पहले कॉलर हम संग आ जुड़े हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान रखकर ही हमें कॉल मिलाएं। हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं पिंटू बोल रहा हूँ बलोच से।
0: जी कार्यक्रम है आपके पसंद गीत हमारे।
1: जी मैडम जी।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं पिंटू बोल रहा हूँ बलोल से।
0: जी पिंटू जी, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैडम दिलवाले फिल्म का सुना देना जी।
0: दिलवाले फिल्म से आप गीत सुनेंगे। चलिए, तो इनका कॉल भी कट गया। इन तक पहुंचा रहे हैं हम इनके पसंद का गीत।

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

दोस्तों, संगीत वह खूबसूरत एहसास है जो दिलों को जोड़ता है, यादों को ताज़ा करता है और जीवन के हर रंग को और भी खूबसूरत बना देता है। और जब बात हो आपकी पसंद के गीतों की तो यह सफ़र और भी खास हो जाता है। जब तक जुड़ते हैं कोई और श्रोता हम संग, तब तक हम सुनवा रहे हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: बात कर रहा हूँ लिट्टी फड़का उत्तर प्रदेश से। एक मुझे सुनना है जो अपनी पसंद का गाना। अच्छा कोई फिल्म थी बता सकती हूँ?
0: आपकी आवाज बिल्कुल भी हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है, एक बार फिर से बता
1: या
0: दीजिए
1: कह रहे
0: प्लीज
1: कौन
0: फरमाइश।
1: उसका जो अपनी पसंद का गाना सुना दीजिए। कोई सा कौन कौन फिल्में रखी हैं जा पूछ रहे हैं?
0: दोस्ती फर्ज पद्मावत हमराज गरमा दो रास्ते तकदीर वास्तव स्वामी सनम सत्यम शिवम सुंदरम
1: सनम का
0: नीलकमल।
1: सुना दीजिए आज। सनम का सुना दीजिए आज। सनम तुमको मिलके वादा कर लो।
0: नहीं, सनम फिल्म में ये गाना नहीं है। सनम फिल्म में और गाने हैं, अगर इसी फिल्म का गीत
1: हमराज
0: सुनाएं।
1: का हमराज नई वाली की पुरानी वाली है?
0: जी ये पुरानी वाली है।
1: अच्छा, तो अपनी पसंद का कोई गाना लगा दीजिए जो अच्छा लगे सो है। और मैं सचिव बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका। आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र जो आकाशवाणी के धर्मशाला ने अभी तो मैं देखा था फेसबुक पर, तो धर्मशाला ने तो बहुत अच्छा लगा रहा क्योंकि उसमें अभी अध्यापना दिवस थी धर्मशाला केंद्र की।
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा था।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा
1: हाँ
0: लगता
1: तो बहुत
0: है।
1: अच्छा।
0: आप सब श्रोता हम संग जुड़ते हैं, बातें होती हैं, सुनते हैं प्रोग्राम्स और फिर हमें फीडबैक भी देते हैं।
1: आपके इधर तो मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ आपके इधर बारिश कैसी हो रही है?
0: बारिश आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ धर्मशाला में तो।
1: अच्छा,
0: जी
1: मेरे ये
0: जी
1: तो मैडम जी आपके इधर बारिश तो हो रही है। आप उधर से बारिश यूपी में भेज दीजिए क्योंकि यूपी में बारिश नहीं हो रही। बारिश के लिए तरस रहे हैं लोग क्योंकि फसलों के लिए बारिश हो जाए तो ये धान की खेती होती है तो
0: जी
1: धान
0: जी
1: लगाने लगाने के लिए तैयारी है तो बारिश हो जाए
0: जी
1: तो धान लगा दें। क्यों बारिश जाओ फिर तो बारिश नहीं होगी तो फिर तो समर सेबल होती है
0: जी जी
1: उससे भी सिंचाई करना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो जाए तो बारिश के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो आपके इधर शिमला हो कई की जगह मैंने सुना है शिलोंग में सुना है काफी ये क्षेत्र के पहाड़ी इलाका वाले तो उन पे बारिश ज़्यादा होती है।
0: जी जी बारिश भी बहुत ज़रूरी है। मानसून आ गए हैं, पहुंच जाएंगी आपके वहां तक भी।
1: क्योंकि मैडम जी ये कहना चाहता हूँ
0: जी
1: जैसे बारिश क्या बारिश पर्यावरण के हम लोग छेड़छाड़ करते हैं।
0: जी
1: ये
0: जी
1: पेड़ पौधे काटते हैं, वृक्ष फोड़ लगाते नहीं है, पानी कहीं भी तो अटका होना देना चाहिए। बारिश का पानी तो वो अटका होना देना चाहिए क्यों पर्यावरण छेड़छाड़ करते हैं तो वही प्रकृति हमको आगे चल को और दिक्कत देगी। तो
0: जी
1: पेड़ ज्यादा ज्यादा लगाना
0: ज़्यादा जी
1: चाहिए।
0: बिल्कुल सबको लगाने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल।
1: अभी
0: तो
1: तभी
0: पाल
1: तो
0: की
1: ऐसा। और आने वाले समय में आगे आगे आगे वाली जो आगे पीढ़ी आएगी है तो
0: जी
1: उनको कितने कष्ट होंगे। तो अभी जैसे आदमी इतनी गर्मी पड़ रही है तो क्योंकि बारिश होती तो बहुत होती है, सर्दी होती तो बहुत होती है तो क्यों इसका कारण ये पर्यावरण को क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं इसी चक्कर में। पेड़ एक एक नहीं लगाते चार काट देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ सबसे ज्यादा लगाना चाहिए। कोई सूखा पेड़ा हो तो सूखा पेड़ हो तो उसको काटना चाहिए नहीं तो पहले हरा कोई पेड़ नहीं लगाना चाहिए।
0: जी बहुत ही मतलब अच्छी आपने सब हमारे सुनने वालों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। तो सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं
1: हाँ
0: आपको
1: जी जी
0: मोहम्मद रफ़ी
1: मैं
0: का गाया हुआ पालकी फिल्म से ये गीत, उम्मीद है पसंद आएगा।
1: मैडम जी का नाम लेना चाहता
0: जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल लीजिए नाम।
1: पहले सबसे पहले मैं आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है। आपका नाम जान सकता हूँ मैं
0: जी
1: भी?
0: जी रेनू मनकोटिया नाम है।
1: अच्छा, जी, आपके लिए सबसे पहले गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी
1: और अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैं, लोकेंद्र गुर्जर हैं जी मध्य प्रदेश से, और जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपने मैडम जी ये कहना चाहता हूँ जिससे आपके इधर मैंने सुना था आपके नीम करोरी बाबा में आए थे तो आपके इधर नीम करोरी बाबा मेला

0: निमकोरी बाबा, निमकोरी वाले बाबा हैं
1: जी, हाँ जी, नाम
0: धर्मशाला
1: सुना
0: के
1: है,
0: यहीं थे।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो
0: तो आपके
1: चलिए,
0: इधर से थे लेकिन यार मेरे यहीं आएंगे अब।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लीजिए, सुनिए आप अपने पसंद का गीत।
0: कभी आना तो मैडम जी यूपी में घूमने आना, कभी आना
1: जरूर
0: तो
1: जरूर
0: कभी
1: जरूर
0: मौका।
1: आएंगे जी।

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार जी।
1: नंदपुर
0: बटोली से क्या नाम बताया आपने अपना?
1: बटोली
0: कश्मीर सिंह जी। जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: नीलकमल का सुना दो।
0: जी नीलकमल का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई सुना दो, सभी अच्छे हैं।
0: चलिए हम पहुंचा रहे हैं आप तक आपकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए।
1: हाँ जी,

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: कोटखाई से
1: जी, कोटखाई से।
0: जी। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप।
1: आप कोई भी सुना दो। और इस वक्त मैं जानना चाहता हूँ, कोटखाई का मौसम अभी बिल्कुल अच्छा चल रहा है हमारी
0: जी
1: इधर का,
0: जी
1: और सुबह बारिश आई थी और बहुत अच्छा लग रहा है, और ठंडा बिल्कुल जैसा होता है।
0: जी बिल्कुल। आजकल मॉनसून का मौसम भी शुरू हो चुका है, ऐसे सुहाने मौसम में संगीत का आनंद और भी बढ़ जाता है राकेश जी।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल, तो बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनाएं आज आपको।
1: अच्छा, बाकी फिल्में तो मैंने सुनी थी, अभी जो कौन कौन सी फिल्में बजी है, जो बजी नहीं उनके नाम बता दो।
0: दो रास्ते, वास्तव, स्वामी,
1: जी,
0: मेरे हुजूर, हमराज, परिणीता, पद्मावत, कर्मा, सत्यम, शिवम, सुंदरम।
1: तो हम मेरे हजूर का सुना दो।
0: मेरे हुजूर फिल्म से गीत ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी। कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया जी।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बात हो रही है, किससे?
1: रक्कड़ से कर रहा हूँ जी बात।
0: रक्कड़ से कौन बात कर रहे हैं?
1: संजीव कुमार जी।
0: जी संजीव जी, बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता हम संग जुड़ते हैं। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपके पसंद गीत हमारे कार्यक्रम में आपको?
1: सड़क फिल्म का जी,
0: सनम फिल्म का?
1: सड़क फिल्म, सड़क संजय दत्त जी।
0: सड़क फिल्म तो आज हमने नहीं यहाँ पे रखी है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे वैसे उस फिल्म से आप?
1: हाँ जी, ये
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सड़क फिल्म का गाना सुना दो कोई भी थी।
0: चलिए, आपकी पसंद पूरी कर रहे हैं हम। कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: हाँ जी, धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी, कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: जी, आपके पसंद गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जांगड़े जी।
1: शुक्रिया।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए आज आपको?
1: कौन कौन सा बज गया?
0: दोस्ती, फर्ज, पद्मावत, हमराज, कर्मा, दो रास्ते, तकदीर, वास्तव, स्वामी, सनम, सत्यम, शिवम, सुंदरम, परिणीता।
1: दोस्ती से कोई भी गीत सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल, इसके बाद हम पहुंचा रहे हैं आपके पसंद का गीत। कार्यक्रम में कॉल किया, अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी

0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: आज आपने मेरे कॉल उठाने में बहुत देर कर दी, क्या बात है।
1: आपका कॉल पहले कट रहे थे, पहले भी हम उठा रहे थे, पर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी और अब आया तो हमने उठा लिया।
0: हाँ जी, तो चलिए सत्यम शिवम फिल्म का गाना सुना देंगे। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, ये वाला गाना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचा रहे हैं आप
0: और
1: तक।
0: एक एक रेणु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, इतनी लंबी बात को मत खींचा करिए, दूसरे श्रोता भी पीछे लाइन में लगे हुए होते हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए। कम बात में ही अपनी बात खत्म कीजिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। पहुंचा रहे हैं आप तक आपके पसंद का गीत। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी। अरे
0: नमस्कार जी। आपके पसंद गीत हमारे कार्यक्रम
1: जम्मू
0: में
1: से,
0: आपका स्वागत। कौन और कहाँ से बात कर रहे
1: अरे
0: हैं
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जी? केशव जी, कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगता है जब नए
1: अरे
0: नए
1: फोन
0: श्रोता हम संग
1: मिलता है,
0: जुड़ते
1: फोन
0: हैं जी। बताइए,
1: बड़ी
0: कौन से
1: मुश्किल
0: फिल्म
1: से
0: का गीत
1: मिलता है मैडम
0: सुनेंगे
1: जी। नहीं, फोन बड़ी मुश्किल से मिलता है जी।
0: जी? मतलब ये है कि सभी इस टाइम लगे रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं,
1: अरे
0: तो
1: मैं भी
0: यही दिक्कत है।
1: कब से लगा हूँ, अभी बड़ी मुश्किल लगा है जाके। तो
0: चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत।
1: गाना मैडम मुझे सुना दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम का भी थोड़ा गाना हुआ है ये, सुना
0: जी, अभी सुनाया हमने उसी फिल्म का गीत।
1: दिया।
0: जी,
1: चलो फिर नीलकमल का सुना दे, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
0: नीलकमल फिल्म से भी आपको हमने गाना सुना दिया है। अभी हमराज है
1: नहीं,
0: जी,
1: हमराज का भी हो गया मैडम, नामू छुपा के दियो वो हो गया ना।
0: कर्मा है, वास्तव है, स्वामी है।
1: स्वामी का सुना दो, भाग जाऊंगी मैं भाग जाऊंगी अपने राजा के साथ साथ, संग संग भाग जाऊंगी, है ना गाना इस टाइप का एक, भाग
0: जी बिल्कुल।
1: जाऊंगी हाँ भाग जाऊंगी अपने राजा के संग संग भाग जाऊंगी, ये वादा था मेरा राधा था। इस तरह का गाना मेरा बड़ा अच्छा गाना है, केशुदास और शायद आशा भोसले ने गाया
0: स्वामी
1: शायद
0: फिल्म का गीत तो ये नहीं है।
1: ये, नहीं है। चलो फिर कर्मा का सुना दीजिए मैडम, थोड़ा हर कर्म अपना करेंगे तो कुछ साथी है मेरे मैडम।
0: निकाह फिल्म भी है, फर्ज भी है।
1: फर्ज का सुना दो फिर, तुमसे वो हसीना कभी मोहब्बत है ना गाना, तुमसे
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल
1: हसीना कभी, ये वाला सुना दीजिए फिर।
0: बिल्कुल। केशव जी पहुंचा रहे हैं आप तक
1: ठीक है
0: आपके
1: मैडम, एक
0: पसंद
1: मिनट
0: का गीत।
1: साथी का नाम ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी मैडम
0: जी
1: मैं
0: जी
1: मिली
0: प्लीज।
1: केशव।

0: रही है, बच्चियाँ मेरी अंशु शर्मा है, साथी शर्मा है, भाई मेरा सतपाल शर्मा है, दोस्त है मेरे यूपी से विजय पांडे जी, राजस्थान से पूर्ण वर्मा जी, और आपके हिमाचल से हैं जी हमारे गोल्डी भैया जी।
1: जी चलिए, उन तक आपकी फरमाइश जो है ये पहुंच गई होगी जो आपने डेडिकेट किया उनके लिए ये गीत।
0: मेरी बेटी भी है मैडम, ये तो अनाउंसर समझ लीजिए, वो कंपेयर है
1: जी,
0: तो न्यूज रीडर भी है टीवी में
1: जी।
0: चलो
1: चलिए सुनिए आप अपनी पसंद का गीत।
0: मैडम थैंक यू
1: जी, थैंक यू जी।

0: अब कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में विदा लेने का समय हो चला है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फोन करके इस कार्यक्रम को और भी यादगार बनाया। फिर मिलेंगे अगले अंक में आपकी नई फरमाइशों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुनील शर्मा से। अब अपनी रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगर

0: में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाज़ों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his three-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition, and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aprajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
1: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached to 60,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and